0: से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जी हाँ, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुबह के 5:37 और हो गए हैं 3 सेकेंड। आप सभी को सुप्रभात, और माधुरी आप सभी को देती है रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाइयां। आप सभी भाई बहनों का प्यार और सम्मान यूं ही सलामत रहे।

आप जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखिएगा, उन लोगों की कद्र करना कभी मत भूलिएगा जो हमेशा आपके कद्र करते हैं।

नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 389 हो गई है। प्रशासन हजारों लापता लोगों को खोजने के लिए तेजी से काम कर रहा है। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों ने बताया है कि अभी 1,500 से अधिक लोग लापता हैं, जिनमें कई विदेशी नागरिक शामिल हैं। लापता लोगों में 30 से अधिक देशों, मुख्य रूप से भारत, अमेरिका, मलेशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी और रूस के लोग शामिल हैं। नेपाल पुलिस ने बताया कि प्रभावित इलाकों से लगभग 1,500 से अधिक लोगों को बचाया गया है, इनमें घायल लोग भी शामिल हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली 1 जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत

0: नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी देशों के मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। ताशकंद के बाद प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक अहम पड़ाव है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में आज ही के दिन की थी। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। रक्षाबंधन का त्योहार आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखी बांधती हैं और उनकी खुशहाली, सेहत और समृद्धि की प्रार्थना करती हैं। भाई भी अपनी बहनों को उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं और उन्हें उपहार देते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने रक्षाबंधन के पर्व पर देशवासियों को बधाई दी है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज रक्षाबंधन के त्योहार के साथ संपन्न होगी। 57 दिन तक चली यह यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी। यात्रा का समापन पवित्र गुफा मंदिर में महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में पवित्र छड़ी मुबारक के पहुंचने के साथ होगा। इस वर्ष पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से 4,80,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने यह यात्रा पूरी की है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और बिहार में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज वर्षा होने का अनुमान है। खेलों में हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने नीदरलैंड्स के एम्स्टलवीन में 5वें स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में जर्मनी को 3-1 से हरा दिया है। वर्ष 1974 में हुए पहले विश्व कप में 4था स्थान हासिल करने के बाद ये भारतीय महिला टीम का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुबह के 11:09। दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9 और आज मैं हूं निशा आपके साथ, आपकी हम सफ़र इस खूबसूरत म्यूज़िकल जर्नी का हिस्सा। और बस यही कहना चाहूँगी कि कभी कभी ना दोस्तों, एक गाना सिर्फ गाना नहीं होता। और ये इसलिए कह रही हूँ मैं क्योंकि आज रक्षाबंधन है और बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो इस खूबसूरत रिश्ते को डिफाइन करते हैं, वो भी बहुत ही खूबसूरती के साथ। जी हाँ, वो हमें किसी याद तक कभी लेकर जाते हैं। और आज तो रक्षाबंधन का दिन है, तो शायद आप में से बहुत सारे लोगों के पास भी ऐसी कुछ यादें होंगी जिनकी तरफ आप फिर से एक बार पीछे मुड़कर देखना चाहते होंगे। राखी की यादें, बचपन की

यादें और अपने भाई बहन के साथ बिताए हुए वो खूबसूरत पल जिनके होने से हम हैं, हम में अपनापन है और ज़िंदगी खूबसूरत है। और आज दोस्तों राखी का एक धागा हमें उन सभी यादों के करीब ले जाएगा जिनसे हमारा नाता काफ़ी पुराना है। और ये यादें सिर्फ हम तक ही सीमित नहीं होती हैं, ये यादें हमारे अपनों से भी जुड़ी हुई होती है। तो क्यों ना आज फिर से याद करें उन पलों को जिनके होने से ही तो ये त्यौहार उपहार से लगते हैं। एंड एज वी सेलिब्रेट द स्पेशल बॉन्ड वी शेयर विथ आर लव्ड वंस, लेट्स कीप दीज ब्यूटिफुल इमोशनल सॉन्ग्स गोइंग, इमोशंस गोइंग, एंड कॉन्टिन्यू आर म्यूजिकल जर्नी विथ सम मोर मेलोडियस सॉन्ग्स, एडिंग अ लिटिल मोर लव, अ लिटिल मोर वार्म्थ एंड अ होल लॉट ऑफ मेमोरीज टू दिस ब्यूटिफुल ओकेजन। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इस म्यूजिकल जर्नी को, एंड वंस अगेन हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू सेलिब्रेटिंग। सुनते रहिए ये है एफ एम रेनबो 101.9, और क्योंकि खुशी का मौका है तो इसे कुछ ऐसे गानों से सजाते हैं जिनको सुनकर ये सेलिब्रेशन यू नो और सेलिब्रेट करने का मन करे। तो चलिए फिलहाल के लिए चलेंगे एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग के साथ फ्रॉम द फिल्म दिल धड़कने दो।

दोपहर के 11:20 दोस्तों आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9 के साथ। शो चल रहा है नमस्ते हेलो आदाब, मैं हूं निशा आपके साथ। और जी हाँ, आज का जो दिन है काफ़ी ख़ास है। एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ते को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज। किसी की कलाई पे रक्षा सूत्र को बांधना और उससे उस धागे के सहारे ये कहना कि मैं आपके साथ हूँ हर पल, है ना। चाहे जो भी हो, हम हैं आपके साथ। एंड इसी चीज़ को बहुत ही खूबसूरती से रक्षाबंधन के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और वैसे दोस्तों, आज का दिन बहुत खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आज सिर्फ रक्षाबंधन नहीं है, आज बहुत सारी चीज़ें सेलिब्रेट की जा रही है। जैसे श्रावण पूर्णिमा भी है आज, और इस दिन खास करके रक्षाबंधन। और हमारे देश के कुछ हिस्सों में नारली पूर्णिमा भी मनाई जा रही है, जहां रक्षाबंधन दोस्तों भाई बहन के प्यार, विश्वास और एक दूसरे के लिए समर्पण का त्यौहार है। वहीं आपको बता दें कि नारली पूर्णिमा का रिश्ता समुद्र और उससे जुड़े लोगों के साथ है। जी हाँ, इस दिन जल और समुद्र के देवता भगवान वरुण की पूजा की जाती है। और जो मछुआरा समुदाय है, मछुआरे समुद्र को शांत रखने और अपनी सुरक्षा की कामना के लिए समुद्र देवता में नारियल, फूल और चावल अर्पित करते हैं। और खास तौर पर ये जो त्यौहार है महाराष्ट्र और कुछ कोस्टल रीजन्स जैसे गोवा और कोंकण तट के तटीय क्षेत्रों में हिंदू मछुआरा समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक पारंपरिक और धार्मिक त्यौहार है, जिसे बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। वैसे दोस्तों, इस पर्व को मनाने के पीछे एक रीज़न ये भी है कि मॉनसून के मौसम में समुद्र में मछली पकड़ना खतरनाक माना जाता है और इस दौरान गतिविधियां बंद रहती है। इसीलिए नारली पूर्णिमा के दिन वरुण देव की पूजा के साथ ही मछुआरे नए सत्र के लिए सुरक्षित रूप से मछली पकड़ने के व्यवसाय की फिर से शुरुआत करते हैं। तो जी हाँ, एक ही दिन में हम अपने रिश्तों का जश्न मना रहे हैं और साथ ही प्रकृति के प्रति अपना आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। एक तरफ कलाई पर बंधा हुआ राखी का धागा हमें अपनों से जोड़ता है और दूसरी तरफ समुद्र को अर्पित किया गया नारियल हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता भी उतना ही गहरा है। और शायद यही खूबसूरती हमारे कल्चर की, जहाँ ये फेस्टिवल्स हमें कुछ रीजन दे देते हैं टू पॉज, टू सेलिब्रेट, टू रिमेम्बर आर रूट्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टू फील कनेक्टेड अपनों से, अपनी परंपराओं से और अपने आसपास की दुनिया से। तो आज के इस खूबसूरत दिन को सेलिब्रेट करते हुए चलिए अपनी म्यूजिकल जर्नी को भी आगे बढ़ाते हैं कुछ और खूबसूरत गानों के साथ, जो इस फेस्टिव मूड में थोड़ा और प्यार, थोड़ी और मिठास और बहुत सारी यादें जोड़ दें। आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब और मैं हूं निशा आपकी हमसफर इस खूबसूरत म्यूजिकल जर्नी में। तो बनी रहिए मेरे साथ। एंड जी हाँ, रक्षाबंधन को सेलिब्रेट कर रहे हैं हम और इस त्यौहार पे जो मैं गाना अभी प्ले करने वाली हूँ वो ना प्ले हो ऐसा हो ही नहीं सकता। जी हाँ, रक्षाबंधन के दिन ये हमारी प्लेलिस्ट में होता ही होता है ये ट्रैक। आई थिंक जब भी हम रक्षाबंधन को याद करते हैं तो अगर रक्षाबंधन से एक गाने को रिलेट किया जा सके तो वो यही गाना होगा। तो सुनते रहिए, ये FM रेनबो 101.9।

जी हम बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, और आई थिंक इससे खूबसूरत सॉन्ग रक्षाबंधन के लिए कोई हो ही नहीं सकता। एंड यस, बहुत ही प्यारे से रिश्ते को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि आप कहीं भी हो और जिस रिश्ते को आप हो सकता है पीछे भी छोड़ आए हो, उनसे भी कांटेक्ट कीजिए और आज की बधाइयाँ दीजिए, है ना। और इसी के साथ एक बार फिर से इस खूबसूरत दिन की आप सभी को शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद, FM रेनबो 101.9, सुबह के 11:30। वैसे दोस्तों, आज डेफिनेटली बहुत कुछ है करने के लिए, क्योंकि फेस्टिवल्स जो हैं होते ही ऐसे हैं जहां हम हर दिन से थोड़े से और ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। लेकिन इस भाग दौड़ में क्या आपने कभी नोटिस किया है दोस्तों कि हम अपनों से मिलने के लिए भी एक ओकेजन ढूंढने लगे हैं? जी हाँ, कभी राखी, कभी दिवाली, कभी ईद, कभी बर्थडे, कभी एनिवर्सरी। हम सबकी लाइफ इतनी बिजी हो गई है ना, वर्क, डेडलाइंस, मीटिंग्स, ट्रैफिक, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इन सब के पीछे कहीं ना कहीं वो लोग पीछे छूट जाते हैं जो एक्चुअली हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। चलो, शुक्र है इन फेस्टिवल्स का जो हमें मौका देते हैं हमारे अपनों से रिकनेक्ट होने का। दे गिव अस अ रीजन टू पॉज, एक रीजन कि हम अपनी बिजी लाइफ से थोड़ा सा ब्रेक लें और उन लोगों के पास बैठें जिनसे हम सच में कनेक्टेड हैं। और अच्छी बात ये है दैट रिकनेक्टिंग डजन ऑलवेज मीन ट्रैवलिंग हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स। कभी कभी रिकनेक्ट करने के लिए सिर्फ एक फोन कॉल चाहिए, और यकीन मानिए दोस्तों, कभी कभी इतनी से ही दिल भर जाता है। तो आज के इस रक्षाबंधन पर अगर कोई अपना आपसे दूर है तो डिस्टेंस को एक्सक्यूज मत बनने दीजिए। कॉल देम, टॉक टू देम, रिकनेक्ट विद देम, क्योंकि वक्त तो वैसे भी निकल जा रहा है, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें वक्त देना ज़रूरी होता है, और शायद फेस्टिवल्स हमें वही वक्त निकालने की याद दिलाते हैं। और याद रखिए कि रिलेशनशिप्स भी प्लांट्स की तरह होते हैं, जिन्हें पानी ना मिले तो वो धीरे धीरे मुरझाने लगते हैं। बिल्कुल वैसे ही अगर हम अपनों से बात ना करें, उनसे मिले नहीं, उनकी लाइफ का हिस्सा ना बने, तो डिस्टेंस सिर्फ फिजिकल नहीं रहता, वो इमोशनल भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों, रिकनेक्ट करना ज़रूरी है एज इट रिमाइंड्स अस दैट वी बिलोंग समवेयर। वेल, ऑन दैट नोट, लेट्स कंटिन्यू विद सम मोर म्यूजिक। और क्योंकि आज रक्षाबंधन का दिन है, हम अपने घर वालों के साथ हैं, बहुत सारे लोग छुट्टी मना रहे हैं कि नहीं, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ, तो ये जो गाना अभी मैं प्ले करने वाली हूँ ना, ये आप अपने सभी फैमिली मेम्बर्स के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा गाना, हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में।

इंद्र और उनकी पत्नी सांची यानी इंद्राणी से। पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच एक लंबी लड़ाई चल रही थी और इंद्र देवता और देवताओं की स्थिति काफी मुश्किल हो गई थी। तब श्रावण पूर्णिमा के दिन एक रक्षा विधान किया गया और इंद्राणी ने इंद्र देव की कलाई पर एक पवित्र रक्षा सूत्र बांधा। एंड दैट मीन्स ये सिर्फ एक धागा नहीं था, इसके साथ जुड़ी थी प्रार्थना, सुरक्षा की कामना और विजय की उम्मीद। वेल, रक्षाबंधन के पीछे का सबसे खूबसूरत थॉट शायद यही है, रक्षा यानी प्रोटेक्शन, किसी अपने की सुरक्षा की कामना करना। और वक्त के साथ यही रक्षा सूत्र भाई बहन के बीच का प्यार और प्रोटेक्शन का सिंबल बन गया। जी हाँ दोस्तों, लेकिन रक्षाबंधन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस फेस्टिवल ने हिस्ट्री में भी एक बहुत खूबसूरत रोल प्ले किया है। साल था 1905, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंगाल का पार्टीशन अनाउंस किया था और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन लागू हुआ। उस वक्त रविंद्रनाथ टैगोर ने राखी के इस सिंबल को एक नए मीनिंग के साथ सामने रखा। उन्होंने लोगों को, खास तौर पर हिंदूज और मुस्लिम्स को, एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधने के लिए इनकरेज किया, एक मैसेज के साथ कि हम अलग नहीं हैं, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और वो राखी सिर्फ एक धागा नहीं थी, वो थी यूनिटी की निशानी, एक ऐसा थ्रेड जो कह रहा था आप और हम अलग हो सकते हैं लेकिन हमारे बीच का रिश्ता नहीं टूट सकता। एंड आई थिंक दिस इज व्हाट मेक्स रक्षाबंधन सो ब्यूटीफुल। एक तरफ इसमें भाई बहन का प्यार है, एक तरफ है प्रोटेक्शन का थॉट, और तीसरी तरफ हिस्ट्री हमें बताती है कि एक छोटा सा धागा यूनिटी, हार्मनी और टुगेदरनेस का सिंबल भी बन सकता है। तो जी हाँ, इसी खूबसूरत थॉट के साथ चलिए अपनी म्यूजिकल जर्नी को हम आगे बढ़ाएंगे और जुड़ेंगे कुछ और खूबसूरत गानों के साथ। और जुड़ने की बात आती है तो हमसे हमारे कुछ लिसनर्स भी जुड़े हुए हैं। वैसे अभी तक मैंने एक भी मैसेज शामिल नहीं किया है इस सेगमेंट में, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं एक मैसेज शामिल करने जा रही हूँ। एंड ये मैसेज है सरवर अली जी का, लिखते हैं गुड मॉर्निंग, तो आपको भी अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, और कहते हैं हैप्पी रक्षाबंधन, तो आपको भी अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं या ऑब्वियसली किसी को मैसेज भेजना चाहते हैं रक्षाबंधन की बधाई देना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 4023234822। वेल, आगे बढ़ेंगे और चलते हैं कुछ और खूबसूरत नगमों की तरफ, क्योंकि ये है एक म्यूजिकल जर्नी, जिसे कहते हैं नमस्ते हेलो आदाब।

यहाँ पर कुल मिलाकर 4 सेगमेंट्स है, जहाँ पर हमारा एक सेगमेंट जो लास्ट सेगमेंट है वो सबसे स्पेशल है हेलो रेनबो का। और पहला सेगमेंट मैंने थोड़े वेस्टर्न सॉन्ग्स प्ले किए जो आई होप आपको पसंद आए होंगे, एंड इस सेगमेंट में भी कुछ खूबसूरत हिंदी गाने। और फिर जो हमारा तीसरा सेगमेंट रहेगा उसमें भी मैं कुछ वेस्टर्न हिट्स प्ले करने वाली हूँ आपके लिए, और साथ में करेंगे थोड़ी बहुत बातें। एंड यस, फिलहाल के लिए जो समय हमारे पास है उसे इस्तेमाल करते हुए चलते हैं एक और खूबसूरत से सॉन्ग की तरफ। ये है जसलीन रॉयल और हर्षदीप कौर की आवाज़ों में, फ्रॉम द फिल्म बार बार देखो। जी हाँ, आज एक बहुत ही खूबसूरत से फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं हम। और अगर किसी भी फेस्टिवल को अच्छे से सेलिब्रेट करना है तो अगर बैकग्राउंड में कुछ अच्छा सा गाना बजते रहे तो और भी अच्छा लगता है कि नहीं? तो इसीलिए ये खूबसूरत सा गाना आपके लिए, सुनते रहिए ये FM रेनबो 101.9।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। नेपाल में 389 और तिब्बत में 3 व्यक्तियों की मौत की खबर है। सीमा के दोनों तरफ 1468 व्यक्ति लापता है। भोटे कोशी नदी प्रणाली के स्रोत के पास नई झील बन गई है। इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव के

0: जाने की आशंका बन गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे भारतीयों की स्थिति और सलामती का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें भारत की ओर से सहायता का आश्वासन दिया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल अमरीका के उप विदेश मंत्री एलिसन हुकर से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों पक्षों ने राहत और बचाव कार्यों पर चर्चा की। अमरीका ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 5 लाख अमरीकी डॉलर की सहायता की घोषणा की। श्रीलंका ने भी नेपाल को 10 लाख अमरीकी डॉलर की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। इस बीच नेपाल में बाढ़ के बाद बिहार में बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि गंडक नदी के जलस्तर में कल से गिरावट आ रही है।
1: गंडक नदी के पूरे प्रवाह अभी जल स्तर भी ऊंचा नहीं था, बल्कि सामान्य से भी थोड़ा कम था। इसलिए जो भी पानी संभावित था या जो आया, उससे बहुत ज्यादा भयावह स्थिति नहीं बनी।
0: एहतियात के तौर पर गंडक नदी से प्रभावित सभी 8 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत तथा अमरीका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ शिष्टमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुंच को सुलभ बना रही है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की उत्तरी रेंज ने ISI समर्थित पाकिस्तान के एक जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिल्ली के एक दंपति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार दंपति कथित तौर पर पाकिस्तान के हैंडलर्स को सहायता प्रदान करता था। इसमें भारतीय सिम कार्ड खरीदना और उन्हें पाकिस्तान भेजना शामिल था। भारत में सिम कार्ड खरीदने के लिए दिल्ली के स्थानीय लोगों को भर्ती किया गया था। भारत में 7 स्थानों पर 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर संचालित हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 8.78 गीगावाट है। परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुसार 9 अतिरिक्त रिएक्टर निर्माणाधीन हैं। भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है। मौसम विभाग ने ओडिशा और बिहार में आंधी के साथ मूसलाधार वर्षा और बिजली का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तराखंड में भी तेज वर्षा की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज मामूली बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 141 अंक बढ़कर 77,075 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi has said that the Jan Dhan Yojana has delivered unprecedented scale and transformative outcomes with an unparalleled impact. Under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, more than 59 crore accounts have been opened so far, with total deposits amounting to 3,17,000 crore rupees. The scheme was launched by Prime Minister Modi on this day.

0: FM Rainbow 101.9
1: दोपहर के 1:05, जी हाँ, और ये समय यही कहता है कि हेलो रेनबो के साथ हम आपसे जुड़ने वाले हैं। दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9 के साथ, और फिलहाल के लिए जारी होने वाला है हेलो रेनबो का सफ़र। और जैसा कि

0: हर रोज एक टॉपिक रहता है जिस पर हम ढेर सारी बातें करती हैं करते हैं। तो आज तो भाई स्पेशल है, खास दिन है, रक्षाबंधन है ना। और हमने बहुत सारी बातें की इस खूबसूरत रिलेशनशिप के बारे में। और कहीं ना कहीं ये जो टॉपिक है आज का, जो सेलिब्रेशन है, उससे भी थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ है। एंड ये जो सवाल है काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। वेल दोस्तों, बहुत बार हमने सुना होगा, लोग कहते हैं पैसे बचाओ, इन्वेस्ट करो, फ्यूचर सिक्योर करो। लेकिन एक सवाल ये है कि क्या सिर्फ बैंक अकाउंट में बढ़ता हुआ पैसा ही इन्वेस्टमेंट है, या फिर हमारे जो रिश्ते हैं, या फिर ये कह लीजिए नॉलेज है जो हम हासिल करते हैं, जो स्किल्स हम सीखते हैं, जो एक्सपीरियंसेस हमें आगे बढ़ाते हैं, वो भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि दोस्तों, पैसा तो आज है, कल कम भी हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास खूबसूरत रिश्ते हैं, अगर आपके पास कोई स्किल है, किसी चीज़ को सीखने और समझने की क्षमता है, तो शायद आप दोबारा पैसा कमा सकते हैं। और यही है आज का आपका सवाल कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आपकी नज़र में क्या है, पैसा या फिर रिलेशनशिप्स या फिर नॉलेज या फिर कोई स्किल। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं दोस्तों। हमारे जो फ़ोन नंबर्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला नंबर 0402323 0030, दूसरा नंबर 0402323484821, और तीसरा नंबर 0402974715। तो ये तीन नंबर्स हैं जिन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। वैसे तो मैं आज यही चाहूंगी कि आज जितना हो सके आप अपना जो टाइम है वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ स्पेंड करें, इस फेस्टिवल को खूब इंजॉय करें, एक एक मोमेंट को इंजॉय करें, और उन मोमेंट्स में ढेर सारी मेमोरीज क्रिएट करें जो आगे आने वाले सालों में आप सोच कर मुस्कुराएं। और साथ में चाहूंगी कि अगर आपके पास थोड़ा सा समय है तो आप हमसे भी जुड़ें। तो जी हाँ, आज का यही है सवाल कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आपकी लाइफ में आपको क्या लगता है। एंड आई थिंक हमारे एक कॉलर हमसे जुड़ना भी चाहते हैं, तो आइए देखते हैं कौन है वो। हेलो रेनबो।
1: हेलो
0: हाँ जी
1: जी,
0: नमस्कार,
1: नमस्कार जी, कैसे हैं आप?
0: मैं बहुत बढ़िया हूँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो रेनबो में, और बताइए।
1: मैं दीपू मेहरीपट्टनम से बात कर रहा हूँ।
0: ओके दीपू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं।
1: बहुत थैंक यू मैडम, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं रक्षाबंधन के। जी,
0: और बताइए आपको क्या लगता
1: आज
0: है।
1: का सवाल क्या है मैडम?
0: आज का यही सवाल है कि आपको क्या लगता है आपकी लाइफ में आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या है। वैसे तो मेरा क्वेश्चन यही है कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट पैसा है या फिर रिलेशनशिप या फिर नॉलेज या फिर कोई स्किल। तो आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हमारी क्या है?
1: जी, मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ना, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट नॉलेज ही होता है, क्योंकि
0: ओके जी।
1: नॉलेज हो तो आप पैसे कमा सकते हो, और नॉलेज हो तो आप रिश्ते भी कमा सकते हो, क्योंकि
0: जी
1: उसके लिए भी तो नॉलेज ही होना सकता है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने।
1: तो एक हिसाब से नॉलेज ही सब कुछ है। पैसा अभी अभी आया हुआ है, पहले कहाँ था पैसा?
0: अच्छा जी, बिल्कुल सही बात
1: वहीं
0: कही
1: पे ही है।
0: आपने।
1: जब
0: यस
1: अपनी
0: हाँ।
1: हमारे पूर्वज, अगर हम बोले कि हम बंदर से आए हुए हैं, तो तब कहाँ से था पैसा? इतना डेवलपमेंट आया स्किल्स के साथ और
0: जी
1: नॉलेज
0: जी
1: के साथ
0: बिल्कुल,
1: ही
0: नॉलेज
1: ना।
0: के साथ जी।
1: तो इसीलिए मेरे हिसाब से नॉलेज ही सबसे बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। और रही बात पैसा, टाइम इज ऑलवेज मनी।
0: वाह क्या बात है। तो चलिए,
1: जी
0: बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के, और बहुत ही अच्छी बात कही आपने, एंड आपका जो
1: जी
0: आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग।
1: थैंक यू सो मच। और
0: थैंक
1: हमारे
0: यू
1: एक
0: सो मच।
1: छोटा सा मैसेज सभी लोगों के लिए कि
0: हाँ जी बताइए।
1: रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिसके पास भाई नहीं, जिसके पास बहन नहीं, पर ये रक्षाबंधन जो है ना, सिर्फ मतलब भाई बहन का ही नहीं होता है, तो हर किसी को हम एक मान सकते हैं कि हम इसकी रक्षा करेंगे,
0: जी
1: क्योंकि
0: जी
1: अपना
0: बिल्कुल।
1: है और
0: हाँ
1: ये
0: जी।
1: अपनों का त्योहार है। जी
0: बिल्कुल
1: मैडम,
0: सही।
1: थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, और इतनी अच्छी अच्छी बातें करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।
1: वेलकम।
0: थैंक यू। तो जी हाँ, ये थे दीपू, और इनका कहना बिल्कुल सही था कहीं ना कहीं कि अगर हमारे पास नॉलेज हो तो हम अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं, रिश्ते कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। एंड यस, हमारे कुछ और लिसनर्स हैं जुड़ने के लिए तैयार, तो हमारे एक और लिसनर से जुड़ेंगे। हेलो
1: हेलो,
0: रेनबो। हेलो
1: राधे राधे।
0: राधे राधे मुरली जी, कैसे हैं आप?
1: एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हैं निशा?
0: मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, और रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। होपफुली आप बहुत एंजॉय कर रहे होंगे अपनी फैमिली के

और नॉलेज के हिसाब से उसको जो है लोग उसकी इज्जत और कदर भी करते हैं. नॉलेज का होना और तालीम का होना, और तालीम ही जो है इंसान का एक जेवर और एक गहना है, तो ये चीज होना जरूरी है. पैसा भी सेविंग करना चाहिए, पैसा सेविंग इसलिए करना चाहिए और

0: मेरी और शेरखान भैया की तरफ से जो है, मैं उनकी बहन हूँ, हम दोनों की तरफ से आज जो है हमारी बहन अंबिता की बर्थडे है,
1: ओके
0: तो उसको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करती हूँ कि ऊपर वाला उसको हमेशा खुश रखे,
1: जी
0: आबाद रखे।
1: जी
0: और मैम एक सॉन्ग प्ले कर दीजिए ना इसके लिए,
1: अच्छा
0: नन्ही सी मुन्नी सी आई कोई परी।
1: ओके, मैं कोशिश करती हूँ।
0: ठीक है मैम,
1: जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया,
0: शुक्रिया मैम।
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो जी हाँ, एंड हमारे कुछ और भी कॉलर्स हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, और अभी इन्होंने बहुत ही प्यारी बात कही कि हम जब किसी की खिदमत करते हैं तो वो भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है, वो भी एक अच्छी सेविंग होती है। आपने बहुत लोगों को देखा होगा जो कुछ सेविंग नहीं करते बट अच्छा काम करते रहते हैं, और उन्हें कभी किसी चीज़ की कमी भी नहीं होती, और वो लोग ना फ्यूचर के लिए टेंस्ड भी नहीं होते हैं, मतलब जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमने बहुत सारी खिदमत की है और आने वाले दिनों में वो जो खिदमत है वो हमारी इन्वेस्टमेंट है, तो वो हमें मिलेगा। यहाँ पर हमारे कुछ लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप के थ्रू, तो ये मैसेजेस भी हम शामिल कर लेते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। तो यहाँ पर हमारे साथ हैं अश्विन जी फ्रॉम कोटी, लिखते हैं जय श्री कृष्णा, तो आपको भी जय श्री कृष्णा, और लिखते हैं कि बहुत दिनों बाद आप आए। तो जी हाँ बिल्कुल, लेकिन कम से कम आए तो सही। ये लिखते हैं कि दूसरों का भला करने वालों को ही हमेशा दर्द का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले पेड़ को ही पत्थर की मार सहनी पड़ती है, और ये दुनिया वाले भी बड़े अजीब हैं, दर्द आंखों से निकले तो कायर कहते हैं और बातों से निकले तो शायर कहते हैं। वाह क्या बात है, बहुत ही प्यारे मैसेज, थैंक यू सो मच इन मैसेजेस को भेजने के लिए, और आप सभी जो हमसे जुड़े हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और यहाँ पर हमारे साथ हैं हुदा फ्रॉम बाबा नगर, हुदा कहती है कि हाय निशा जी कैसे हैं आप, तो मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, उम्मीद है कि आप भी अच्छे होंगे। और ये लिखती हैं कि दुनिया में एक ही नाम के कई लोग होते हैं, लेकिन पहचाना तो अपने किरदार से ही जाता है। तो जी हाँ बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे नाम के लोग हैं, जैसे मेरा नाम है उस नाम के भी बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन हाँ डेफिनेटली हमारा किरदार जो है अलग अलग होता है, और हम डेफिनेटली अपने किरदार से ही जाने जाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग दिस लवली मैसेज, एंड इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारे कुछ कॉलर्स हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो उनसे भी जुड़ेंगे एक छोटे से संदेश के बाद।
2: హలో డియర్ లిసనర్స్, మన లైఫ్లో ఎక్కువ కేర్ చేసే వాళ్ళతోనే మనకి ఎక్కువ మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ కూడా జరుగుతాయి. అవునా? మనం మన యాంగిల్ నుంచి చూస్తాం, వాళ్ళు వాళ్ళ యాంగిల్ నుంచి చూస్తారు. మనం మనమే కరెక్ట్ అని అనుకుంటాం, కానీ మేబీ అవతల వాళ్ళు కూడా అదే అనుకోవచ్చు కదా. అమ్మ మనకి చెప్పే కొన్ని మాటలు మనకి నసలాగా అనిపించవచ్చు, మన ఫ్రెండ్స్ చెప్పే నిజం మనకి హార్ష్గా అనిపించవచ్చు, ఒకరికి కరెక్ట్ అనిపించేది ఇంకొకరికి కంప్లీట్గా రాంగ్ అనిపించవచ్చు. బేసిక్గా ఒకరికి కన్సర్న్ అనిపించేది ఇంకొకరికి కంట్రోల్ లాగా అనిపించవచ్చు. అండ్ సమ్వేర్ బిట్వీన్ ఆల్ దీస్ మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. అలాంటి మన ఎవ్రీడే కాన్వర్సేషన్స్ వెనుక ఉన్న ఎమోషన్స్ని ఒక్కరి సైడ్ నుంచి కాకుండా రెండు పర్స్పెక్టివ్స్ నుంచి చూడడానికి, ప్రతి చిన్న అనుభవానికి ప్రతి భావనకి వేదిక మన ఈ సిరీస్ అనువంత. At 7 p.m. every day, only on FM Rainbow 101.9.
1: एक बजकर 45 मिनट, दोस्तों आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9 के साथ, हेलो रेनबो का सफर है जारी। मैं हूं निशा आपके साथ, आज आपकी हम सफर इस खूबसूरत से म्यूजिकल जर्नी का हिस्सा। एंड यस, हमारे कुछ लिसनर्स हैं जो अभी भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, और बहुत ही अच्छी बात है कि आप रक्षाबंधन को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और FM रेनबो को भी अपनी फैमिली मानते हैं, तभी तो आप हमसे जुड़े हुए हैं ना, इतने बिजी होने के बावजूद भी। तो चलिए, मन खुश हो गया और मैं चाहती हूँ कि और थोड़ा खुश फील करूँ, और इसीलिए आपसे जुड़ना है। आज का जो टॉपिक है, मैंने आपको बताया कि आपकी जो सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, और इसका जवाब भी दे सकते हैं। और एक और क्वेश्चन है कि आपके लिए सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट क्या हो सकती है, पैसा या फिर नॉलेज। तो हमारे एक कॉलर हमसे जुड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है, आइए देखते हैं कौन है वो। हेलो रेनबो।
3: हेलो निशा जी,
1: नमस्कार, स्वागत है।
3: नमस्कार निशा जी, नमस्कार निशा जी, हैप्पी अपना रक्षाबंधन, रक्षाबंधन शुभकामनाएं।
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ तो बताइए।
3: रमेश बात कर रहा हूँ।
1: रमेश जी, हाँ थैंक यू।
3: तो मेरे तो సబ్సే జాదా మనకు ఫ్రెండ్షిప్ జాదా కన్నా మనకు బోధించారు సార్. ఓ ఫైవ్ సీసీ జాదా మనకు ఫ్రెండ్షిప్ గా బోధ మనకి సార్.

0: क्यों बोले तो मेरे को कम से कम 50-55 साल से मेरे फ्रेंडशिप रहे, वो लोगों के साथ मिलजुल के रहना, उतना ना पैसे कमाए तो भी हमारा उतना तृप्ति में रहता, मैंने दोस्तों के साथ मिलते जुलते योगा करते हुए अच्छा बात करते हुए अच्छा मंच माटू चेस्ट जो कुछ चेस्ट मंच एंजॉय चुस्कते अदे जीवन चला बागन
1: ఓకే
0: సాంగ్ చేస్తారా మేడం?
1: సాంగ్
0: హలో జంజీర్ మూవీలో యారీ హే యారీ హే
1: యారీ హే
0: చాలా బాగుంది
1: ఓకే
0: మేడం, బాగుంటుంది మేడం, ధన్యవాదాలు ప్రియ రమేష్,
1: ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్, థ్యాంక్ యూ. तो जी हाँ, अपने अपने आंसर्स के साथ आज भी आप हर रोज़ की तरह हाजिर हैं, और अच्छा लगा आप सभी की बातों को सुनकर. और यहाँ पर एक आंसर हमारे पास और पहुँच चुका है व्हाट्सएप के थ्रू. ये लिखते हैं, हाय निशा, यू शुड बी लाइक योर नेम एंड योर वॉइस एज वेल. ग्रीटिंग्स ऑफ द डियर फॉर रक्षाबंधन, हियरिंग यू आफ्टर अ लॉन्ग गैप. जी हाँ बिल्कुल. एंड ये लिखते हैं, नॉलेज इज़ बेस्ट इन्वेस्टमेंट, डीवी राव फ्रॉम अलवल. तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और आपका जो आंसर है बिल्कुल सही है, दैट नॉलेज इज़ बेस्ट इन्वेस्टमेंट. एंड यहाँ पर हमारे साथ हुदा हैं, जो कहती हैं कि इनकी फ्रेंड आरती का बर्थडे है आज, तो उनको विश कर दीजिए. तो मैं उनको विश करती हूँ अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. एंड यही होप करेंगे कि आपका दिन अच्छा हो, आपका फ्यूचर अच्छा हो, ब्राइट हो, है ना, और आप हमेशा हंसते रहें. वेल, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे. हमारे कुछ और कॉलर्स हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि उनके लिए सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट कौन सी है, नॉलेज या पैसा. वैसे तो आप में से बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने यही कहा कि नॉलेज सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है, और जो हम अच्छे काम करते हैं वो अच्छी इन्वेस्टमेंट है. कुछ लोगों का आंसर था कि प्यार एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, यानी रिलेशनशिप्स. तो जी हाँ, सारे ही जो जवाब हैं वो मुझे बेहद अच्छे लगे. एंड थैंक यू सो मच इतने सारे जवाब के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए हेलो रेनबो में. वेल, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, और फिलहाल के लिए आपको लिए चलती हूँ कुछ खूबसूरत गानों की तरफ, जब तक हम जुड़ेंगे अपने नेक्स्ट कॉलर के साथ. और इस गाने से पहले एक छोटा सा संदेश आपके लिए.
2: ब्रो, ఆకలేస్తుంది, బిర్యానీ తిందామా?
3: ఏ ఎప్పుడు బిర్యానీ ఏం తింటాం, పదా హలీం తిందాం.
2: తిందాంలే గాని హలీం అసలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలుసా?
3: హలీం ఎక్కడి నుంచో రావడం ఏంటి, మన హైదరాబాదే కదా.
2: కాదు, హలీం ఒక పర్షియన్ డిష్ నుండి ఎన్నో మార్పులతో ఇక్కడికి వచ్చి ఎంత పాపులర్ అయింది.
3: ఓ అవునా?
2: ఇంకా దాంట్లో చాలా న్యూట్రిషియస్ వాల్యూస్ కూడా ఉన్నాయి.
3: సరే కానీ అసలు ఇవన్నీ నీకు ఎలా తెలుసు?
2: జష్నే హైదరాబాద్, జష్నే హైదరాబాద్.
3: జష్నే హైదరాబాదా, అదేంటి కొత్తగా?
2: ఒక్క హలీమే కాదు, ఇలాంటి మరెన్నో డిషెస్ గురించి మనందరికి చెప్పడానికి వచ్చేసింది
4: జష్నే హైదరాబాద్ at 2 p.m. only on FM Rainbow 101.9.

All right, it's 56 minutes past one by the studio clock. Dear listeners, you are tuned into Akashwani Hyderabad, FM Rainbow 101.9. Hello Rainbow ke saath jude hue the aap. Aur samay yahi keh raha hai ki vida lene ka waqt ho chuka hai. Lekin abhi filal ke liye vida to lungi, lekin aapse kuch kehna hai. जी हाँ, एक बात है जो आपसे कहनी है एंड आई थिंक आपको भी वो जानने में ज़रूर इंटरेस्ट होगा. वेल दोस्तों, कहते हैं कि बड़ी होना बहुत अच्छा होता है. चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर आपका कोई बड़ी है तो वो काम आप और अच्छे से करते हो, है कि नहीं? और दोस्तों, रेडियो पर आरजे के साथ तो आप रोज़ रहते हो, है ना? लेकिन अगर एक आरजे के साथ एक और आरजे जुड़ जाए तो क्या बात है ना, मस्ती डबल हो जाती है. तो जी हाँ, आपको बताना चाहूंगी कि अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे.

0: है ना। लेकिन अगले हफ्ते कुछ अलग होगा। यहाँ पर मैं अकेले स्टूडियो में नहीं रहूंगी, मेरे साथ कोई और भी मेरे साथ रहेगा। तो जी हाँ, अगले हफ्ते यानी वेंसडे को FM रेनबो 101.9 पर होने वाला है एक खास शो, आरजे बड़ी शो, जहाँ पर मैं तो रहूँगी, लेकिन इस बार मेरे साथ होंगे मेरे आरजे बड़ी। बातें होंगी डबल, मस्ती होगी डबल, और शायद थोड़ी सी नोक झोंक भी। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि मेरा आरजे बड़ी होगा कौन? तो क्या आप गेस कर सकते हैं कि कौन है मेरा आरजे बड़ी?
1: मुझको पहचान लो, मैं हूँ कौन?
0: कौन? डॉन?
1: अरे नहीं नहीं मैं हूँ आपका दोस्त आरजे जेडी।
0: अच्छा, आरजे जेडी। जी हाँ, तो ये तो इनके बताने का अंदाज था कि मेरे आरजे बड़ी कौन होने वाले हैं, और अभी तक आपको पता चल गया होगा कि मेरे आरजे बड़ी होने वाले हैं आरजे जेडी।
1: जी हाँ, तो दोस्तों तो वेनसडे को तैयार रहिएगा आरजे निशा और आरजे जेडी की जोड़ी के साथ।
0: जी हाँ, दो आरजे
1: एक शो
0: और मस्ती होगी डबल।
1: डबल
0: तो
1: मिलते हैं अगले वेनसडे।
0: जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ FM रेनबो पर। तो जी हाँ, अगली बार जब मैं मिलूंगी तो अपने आरजे बड़ी के साथ मिलूंगी, और बड़ी साथ में, और कोई धमाल ना हो। तो जी हाँ, टोटल धमाल होने वाला है यहीं FM रेनबो के स्टूडियो में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और फिलहाल के लिए धमाल करने के लिए स्टूडियो में आरजे राजेश आ चुके हैं। तो जी हाँ, काफ़ी एक्साइटेड हैं ये भी आपसे जुड़ने के लिए, एंड यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत प्लेलिस्ट के साथ ये आ चुके हैं। तो चलिए, आज के लिए आपसे लेते हैं विदा, इस वायदे के साथ की होगी आपसे फिर एक बार मुलाकात, और उस अगली मुलाकात तक अपना रखिए अच्छा सा ख्याल, और अपने अपनों का भी रखिए अच्छा सा ख्याल, और सुनते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सुनते रहिए FM रेनबो 101.9।
2: FM Rainbow 101.9

आग शक्ति है, आग जिंदगी है, तुम सब में एक चिंगारी है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। जो बुराई पास आएगी जल जाएगी, जो पाप करीब आएगा जल जाएगा। तुम सब शोले हो, मशाले हो, जलते

इतिहास को बदला पहिए ने, पहिया घूमता है, दुनिया आगे बढ़ती है। तुम्हें भी एक दिन इतिहास बदलना है, देश को आगे बढ़ाना है। तुम सब आने वाले कल की सांसें हो, तुम सब आने वाले कल की धड़कन हो।

फरिंदर से अभी आप तेलुगु प्रोग्राम सुन रहे थे। अब आगाज होता है उर्दू प्रोग्राम नए रंग का। इस वक्त रात के 9:30 हुए हैं और आप सुन रहे हैं 101.9 FM मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए आगाज हम करते हैं उर्दू प्रोग्राम नए रंग का।

आदाब अर्ज सामाइन, आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग। नैरंग प्रोग्राम सुनने वाले सभी सामाइन की खिदमत में आरजे नूर अफशां का पुरखलूस आदाब। सामाइन, आज हम बहुत ही खास और रंग बिरंगे प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं। आज राखी बंधन भी है, रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, हैप्पी रक्षाबंधन। हमारे प्रोग्राम्स में शामिल है खिरत कलाम पाक, हरफ ताबिंदा, डॉक्टर माइक पर सिलसिले के तहत इंटरव्यू डॉक्टर रामापत प्रताप माथुर से, इसके अलावा गीत सुरीले गाते जा प्याम शब, और एक खसूसी प्रोग्राम आप सुनेंगे यानी जश्न मिलादुन नबी पर रेडियो रिपोर्ट आप सुनेंगे। तो ये आगाज हम करते हैं खिरत कलाम पाक से। पेशकश है हक की।

0: खिरत कलामे पाक अभी आप सुन रहे थे, पेशकश थी हक की। अब आइए सुनते हैं हरफिता बिंदा, पेश कर रहे हैं एम ए हाई।
1: समय तसव्वुर कीजिए कदीम जमाने का, लोगों के पास कितने वसाइल रहे होंगे, जाहिर है बहुत ही कम, लेकिन वो सोचते कितना थे, गौर व फिक्र में कितना वक्त गुजारते थे, उनकी फिक्र में कितनी गहराई थी और जहन भी काफ़ी वसी था। तभी तो आज सदियों बाद भी दुनिया अलबरूनी को, अंसारावी को, अज़ज़वाहिरी को, बोएली सीना को, आइंस्टाइन को और न्यूटन को याद करती हैं। ये तमाम शख्सियात आलमी तारीख का लाजमी हिस्सा बन चुकी हैं, इनके बगैर तारीख अधूरी है। इन शख्सियात का अपने मुल्क के लोग फ़ख्र करते हैं जो इनके पेश करदा फ़लसफ़ों से इस्तेफादा करते हैं। इनमें न सिर्फ खुद उनके मुल्क के लोग बल्कि हर मुल्क के लोग उनके पेश करदा फ़लसफ़ों के एहसानात के बोझ तले दबे हुए हैं। उन्होंने इंसानियत को अजीमुशान एजादात और इनकशाफात का तोहफ़ा दिया है। इन शख्सियात ने साइंस को बुलंदी तक पहुँचा दिया। न्यूटन बाग में तन्हा बैठा था जब उसने दरख्त से सेब को गिरते देखा, जब उसने एक आम और रासिखुल ख्याल की तर्दीद की कि कायनात की हर शय ज़मीन के अतराफ घूमती है, यानी ज़मीन में एक ख़ास किस्म की कशिश मौजूद है जो हर मादी और गैर मादी चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। मार्कोनी को भी लोग मजाक का निशाना बनाते रहे होंगे जब उसने रेडियाई लहरों का पता लगाया था। सोचिए कितने तन्हा थे ये लोग और कितनी मज़ाहमत का सामना किया होगा।

0: जानता नहीं था। ऐसे हाल माहौल में अल्लाह तबारक व ताला ने यतीमों के लिए वारिस बनाकर मुहम्मद मुस्तफा को भेजा, बेसहारों को सहारा बनाकर मुहम्मद अरबी को भेजा, तालिब को मतलूब की हैसियत से मुहम्मद मुस्तफा तशरीफ लाए, और नमाजों को दुरूद मिला तो मुहम्मद मुस्तफा के वसीले से मिला, सजदों को तकद्दस मिला तो मुहम्मद मुस्तफा के वसीले से मिला।
1: अब समाप्त फरमाइए मौलाना सैयद निसार हुसैन हैदर आगा का खुसूसी और फिक्र अंगेज बयान।
2: रसूल आजम अगर ना होते तो इंसान जहालत के अंधेरों में था। कहीं कुरान कह रहा है वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन, हमने आपको रहमत बना के भेजा है। तो जहां जहां रहमत का जिक्र होता है वहां मुसीबतें हल हो जाती हैं, वहां परेशानियां दूर हो जाती हैं। शर्त यह है कि हम मुस्तफा से मोहब्बत करें, हम मुस्तफा से इश्क करें, अपने आप को उस मुकाम पर लेकर जाएं कि अल्लाह ने इतनी मोहब्बत से इंसानों को बनाया है और अल्लाह हमसे यही चाहता है कि हम मुस्तफा से इश्क करें, मुस्तफा से मोहब्बत करें और अपनी जिंदगी उसवे हुसना पर गुजारे। और आप यहां पर आए हैं, तबरीक अर्ज करता हूं, मुबारकबादी पेश करता हूं और मुकम्मल चंद लम्हों के लिए आपके तवज्जुहात का तालिब हूं। आपकी निगाहें यहीं पर रहे कुछ लम्हे के लिए ताकि कुछ हासिल कर जाए। मीलाद में एक ऐसा वक्त भी आता है कि जब वो निगाहें करम होती है रहमतुल लिल आलमीन की, वो रब्बुल आलमीन ने रहमतुल लिल आलमीन को भेजा है, और जब फतेह मक्का के वक्त मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब से रसूल ने कहा कि या अली आप पहुंचा दीजिए आज की अहमियत, तो उधर मौलाए कायनात ने कहा कि यौमिल मरहमा, आज रहमत का दिन है। जब फतेह मक्का हुई तो अली ने कहा कि रहमत का दिल है, रहमतुल लिल आलमीन की जहां जहां पर जिक्र होगा, जहां पर उनकी फिक्र को बयान किया जाएगा, जिन अकीदों में रसूल की मोहब्बत है वो बुलंदी पर चले जाते हैं।
1: लीजिए सुनिए मौलाना हाफिज उकारी अहसन बिन मोहम्मद अल हमूदी साहब का ईमान अफरोज बयान।
3: हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तालीमात और आपकी मुबारक हयात तय्यबा के मुख्तलिफ गोशों में से एक अहम तरीन हिस्सा और एक अहम तरीन जरूरत जो आज हम सब के लिए फिक्र में डालने वाली और हम सबको होशियार करने वाली और झिझोड़ने वाली जरूरत जो है वो औलाद की तरबियत, नौजवानों में शुरूर और नई नस्ल को महफूज अंदाज में ईमान को मुंतकिल करना है। अजीजाने गिरामी, दुनिया बड़ी तेजी से तरक्की कर रही है। आज से 50-60 साल पहले की जिंदगी में और आज की जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क है।

0: उस जमाने में लोग मेहनत करके कमाने के बावजूद अपने दस्तरखानों को जिस अंदाज से रखते थे, रहना सहना, खाना पीना और उनका रहन सहन, आप यकीन जानिए कि आज हम में से हर सादे सीधे इंसान और मुख्तसर से कमाने वाले लोगों के दस्तरखान भी उस जमाने के सरमायादारों से बेहतर दस्तरखान बन चुके हैं। हमारे रहने का लिविंग स्टाइल बहुत बदल चुका है, कपड़े महंगे पहन रहे हैं, लिबास महंगा है, घर में रहने का स्टाइल, गाड़ियों में फिरने का अंदाज, ये सब हमारा बदल चुका है। हर चीज में तरक्की है, टेक्नोलॉजी में तरक्की आ गई है, हम में से हर एक के हाथ में फोन है, हर एक के पास गाड़ी है और हर एक बेहतरीन जिंदगी गुजार रहा है। टेक्नोलॉजी के इजाफे ने दुनिया को हमारे हाथ में सीमेंट करके रख दिया है, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो उभर कर आ रहा है वो हमारे बच्चों की तरबियत है। अजीजाने गिरामी, मैं समझता हूं कि आज के इस इजलास में मेरी जिम्मेदारी ये है कि ये हमारे नौजवानों का मसला सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मैं आपके सामने चंद गुजारिशात रखना चाहता हूं। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। देखो, तुम्हारी जिंदगी के हर मरहले में, हर मोड़ में, हर जमाने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन नमूना है, सबसे जबरदस्त रोल मॉडल है।
1: इस बाबरकत महफिल के मुअज्जज मेहमान जनाब दिलशाद अहमद कादरी साहब, शेखुल हदीस मदरसा आलिया कादरी बदायूनी उत्तर प्रदेश का खुसूसी खिताब समाअत फरमाइए।
2: कोई महरूम करम कोई तरसता न रहा, कोई महरूम करम कोई तरसता न रहा, जिस पे बरसी न रहमत कोई ऐसा न रहा, आप जिस दश्त में पहुंचे कोई प्यासा न रहा, आप जिस राह से गुजरे कोई कांटा न रहा, फूल ही फूल खिलाने के लिए आप आए, बज्म कौनैन सजाने के लिए आप आए, आप आए तो जमाने के नजारे बदले, जुल्मो जबरो सितमो जोर के धारे बदले, जितने फरसूदा कवानीन थे सारे बदले, और गम नसीबों के मुकद्दर के सितारे बदले, उनको सीने से लगाने के लिए आप आए, बज्म कौनैन सजाने के लिए आप आए। और शायर कहता है, दिल में जब इश्क़े मुस्तफ़ा ही नहीं, दिल में जब इश्क़े मुस्तफ़ा ही नहीं, फिर दिल धड़कने का मजा ही नहीं। और सुन लिया हुजूर ने सब मेरे, सुन लिया हुजूर ने सब मेरे, और मैंने अभी कुछ कहा ही नहीं। और जो भी आया मेरे हुजूर के पास, जो भी आया मेरे हुजूर के पास, ऐसा बैठा कि फिर उठा ही नहीं। और नात सदियों से कह रहे हैं लोग, नात सदियों से कह रहे हैं लोग, फिर भी लगता है कुछ कहा ही नहीं।
1: और अब आते हैं इस रूहानी व बाबरकत महफिल के इख्तितामी मरहले की जानिब। आखिर में समाअत फरमाइए, जलसे रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निगरान नकीब मिल्लत अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन अवेसी साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व मुअज्जज रुकन पार्लियामेंट का खुसूसी खिताब।
3: रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क अगर पैदा करना है, उसको मजबूत करना है, तो ये बहुत जरूरी है कि औलिया की सोहबत आपको और हमको मिलना जरूरी है। अल्लामा पानीपति रहमतुल्लाह अलैह ने यह हदीस शरीफ लिखी बुखारी की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो उस वक्त तक मोमिन नहीं है, ये बुखारी में भी हदीस है कि वो उस वक्त तक मोमिन नहीं है जब तक वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया की हर चीज से ज्यादा मोहब्बत करे, चाहे उसके वालिद हों, वालदा हों, बीवी हो, बच्चे हों, दौलत हो, कारोबार हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तब उसी वक्त आप

0: आप सुन रहे हैं 101.9 FM मेगाहर्ट्ज पर उर्दू प्रोग्राम नैरंग। आइए आप सुनते हैं डॉक्टर माइक पर सिलसिले के तहत लिया गया इंटरव्यू डॉक्टर रमापत प्रताप माथुर से। आज का अनवान है न्यूरोलॉजी, तो आइए सुनिए।
1: डॉक्टर माइक पर सामाइन, आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम में आज हमने दावत दी है डॉक्टर रमापत प्रताप माथुर को, जिनका नाम हमारे सामाइन के लिए नया नहीं है। डॉक्टर साहब हर बार हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ लाते हैं और उनकी माहिराना गुफ्तगू से हमारे सामाइन हमेशा इस्तेफादा करते रहे हैं। आज भी हमने डॉक्टर साहब को यहाँ दावत दी है, वो यहाँ तशरीफ लाए हैं, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, जिनसे हम आसाबी निज़ाम, उसकी कमज़ोरियाँ, उसकी बीमारियाँ, उसका इलाज, एहतियात, इन चीज़ों पर बात करेंगे जो हमारे सामाइन के लिए यकीनन फ़ायदा मंद साबित होंगी। तो आदाब अर्ज़ डॉक्टर साहब।
2: आदाब अर्ज़।
1: डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ लाए, और जो आपका सब्जेक्ट है न्यूरोलॉजी
2: जी,
1: तो हम इस सिलसिले में आपसे गुफ्तगू करेंगे आज, और हमारी आज की बातचीत का मौजू आसाबी निज़ाम और उसकी कमज़ोरी है और उसके से मुतालिक जो बीमारी है उससे जुड़ी हुई, उसके सिलसिले में हम आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे सामाइन को ये बताइए कि आसाबी निज़ाम है क्या।
2: आसाबी निज़ाम एक ऐसा निज़ाम है जिस पर आपकी ज़िंदगी मुनहसर है
1: जी,
2: और इस ज़िंदगी का राज है एक अच्छी सोच
1: जी,
2: और इस सोच से आप जैसा हम सोचेंगे वैसा अपने जिस्म पे उसका असर होता है
1: जी,
2: और अच्छी सोच से एक अच्छा इंसान बनता है। ये अच्छी सोच से जब इंसान बनता है तो उसकी ज़िंदगी उससे बड़ी तोहफा क्या दे सकती
1: है
2: जो उसको एक अच्छा इंसान बना रही।
1: एक सवाल आपकी इस बात से मेरे जहन में आया
2: जी
1: कि कोई शख्स अगर किसी भी आसाबी कमजोरी में या बीमारी में मुब्तला है
2: जी,
1: तो क्या वो अपनी सोच से उस पर काबू पा सकता है?
2: बड़ा अच्छा सवाल किया आपने
1: जी।
2: सोच हर चीज है, अगर आप अच्छा सोचेंगे तो आपको अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। आपको शायद ना मालूम हो कि हम जब अच्छा सोचते हैं और खुशी हासिल करते हैं तो उसमें एक हार्मोन निकलता है।
1: अच्छा,
2: वो दिमाग से निकलता है
1: जी,
2: और उसका नाम है एंडोर्फिन्स
1: जी,
2: ये खुशी का हार्मोन है।
1: तो इससे सेहत को फायदा पहुंचता है?
2: सेहत ही नहीं, आपकी जिंदगी जो है लंबी होती है
1: जी।
2: एक रिसर्च हुई है, वो मैं अपने टेबल के नीचे रखा हूँ
1: जी,
2: और हर एक पेशेंट को बताता हूँ कि एक मुस्कुराहट जिंदगी के 7 साल बढ़ाती है।
1: वाह,
2: तो ये है रोल अपनी सोच का, मगर सोच अच्छी होना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब ये शायद मेरा जहाँ तक ख्याल है हर मजहब में ये बात बताई गई है कि अगर आदमी के ख्याल अच्छे हों, नेक हों, तो उसकी सेहत पर उसका बहुत अच्छा असर।
2: अब सुनिए आपको मैं जो है प्रूफ करता हूँ जो आप कहे उसका जो है प्रूफ करता हूँ। अंग्रेजी में एक कहावत है, थॉट्स बिकम वर्ड्स, वर्ड्स बिकम एक्शन,
1: जी
2: एक्शन बिकम्स हैबिट, हैबिट बिकम्स कैरेक्टर,

0: character becomes your destiny. तो आपका किस्मत आपकी सोच पे है. एक अच्छी सोच एक अच्छा इंसान बनाती, उससे बढ़ के तोहफा क्या है जिंदगी का?
1: नहीं हो सकता.
0: ये तो अपनी जिंदगी का मकसद है,
1: सही.
0: ये जिंदगी से लेके जाते हैं इस दुनिया से.
1: सही.
0: तो हमें चाहिए कि एक अच्छी सोच रहे
1: हमेशा,
0: और जो आदमी
1: सोच,
0: और जो आदमी उल्टी सोच रखता, जो जो है गंदी सोच रहता, वो गंदे नाले के कीड़ा बन के जो है जिंदगी गुजारता, हमेशा डिप्रेशन में, हमेशा जो है एंग्जाइटी में, हमेशा नर्वसनेस में, हमेशा टेंशन में. ये भी क्या जिंदगी है?
1: मसाइल पैदा होते हैं.
0: नहीं, इसका असर अपने जिस्म पे होता, और वो आदमी एक बिल्कुल छरेरा और बिल्कुल जो है लागिर और जो है बिस्तर पे पड़ा हुआ, न उठना आता, ना बैठना आता, ना चल रहा था. सोच जो है सबसे बड़ी चीज है, तो उसको जो है आप संभाल के. अब देखिए, आप बताता हूँ दिमाग का जो एक्शन, आप सुन के परेशान हो जाएंगे. हम गाड़ी चलाते
1: जी,
0: गाड़ी चलाते तो सामने बच्चा आता, फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड में हमको सोचना पड़ता कि किधर जाना और कैसा बच्चे को बचाना.
1: सही,
0: ये है दिमाग का रोल.
1: सेकंड्स के अंदर,
0: सेकंड के अंदर,
1: लम्हे में.
0: कभी चोर आ जाता घर में, तो चोर आने से जो है आपका पूरा दिल दिमाग जिस्म ऐसा मुतासिर होता कि जो है कांपने लगते आप. अब बाद वक्त तो कपड़ों में जो है आप पेशाब कर लेते.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: तो इसका ताल्लुक खौफ से, इसका ताल्लुक दिमाग से. तो दिमाग का असर पूरे आसाब पर होता है. ये आंतों का असर बताया मैं आपको, ब्लैडर पे बताया, तो ये पूरे जिस्म पे जो है, पूरे रगों पे होता है, पूरे रगों पे असर होता है.
1: तो ये दरअसल ये जो पूरा आसाबी निजाम है उसके बारे में आप बता रहे थे.
0: जी. तो जब भी उल्टी सोच होएंगी आपको हमेशा जो है
1: डिप्रेशन का,
0: बिल्कुल एक गलत इंसान बनेंगे. और जिंदगी जो है जो एक रोलर कोस्टर के जैसी है, कभी धूप कभी छांव. तो ये जो है समझना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है. मेरे घर में बच्चों के लिए एक मखौला लिख कर जो है लटकाया हूँ
1: जी,
0: और वो मखौला है, लाइफ इज नॉट ए प्रॉब्लम टू बी सॉल्व, इट्स ए मिस्ट्री टू बी लिव विद. जिंदगी जिंदा दिली का
1: ना,
0: मुर्दा दिल क्या खाक दिया.
1: बहुत.
0: तो हम क्या चाहते कि जो है आप एक अच्छे इंसान बनना और अच्छा जो है काम करना, और फिर जो है बगैर मकसद के. ये याद रखिए, आप ये नहीं सोचना कि कल जो है मैं मरने के बाद मेरा नाम होगा. नहीं, खाली अपने दिल के तशफी के लिए अपना काम करना और चले जाना.
1: इंसान की जिंदगी का मकसद भी यही होना चाहिए.
0: जी बिल्कुल.
1: कि वो एक अच्छा काम करे, एक अच्छी सोच रखे. तो इससे ये साबित होता है
0: जी
1: कि एक अच्छी सोच एक अच्छी सेहत की जामिन होती है.
0: आपको तो दूसरी बात ये बोलना चाह रहा हूं मैं कि जो है ये देखिए, आप बगैर बीमारी के खाली सोच से जो है आपका पूरा जिस्म मुतासर हो रहा. दूसरा एक ऐसी चीज है, गर्मी. आप तो सुने होंगे ग्लोबल वार्मिंग.
1: जी हाँ जी.
0: और हमेशा हर साल जो है ये
1: बढ़
0: रही है. तो ये बड़े बूढ़े लोगों पे जो है बहुत बुरा असर करती है
1: जी.
0: क्योंकि उनको जो है पसीना बहुत निकलता, और जब पसीना ज्यादा निकलता गर्मी की शिद्दत से, तो आपका सोडियम चले जाता.
1: अच्छा, तो कमजोरी.
0: जब सोडियम जाने के बाद कमजोर,
1: तो हम जो तदारुक,
0: हम जो जिंदा हैं इलेक्ट्रोलाइट्स पे हैं. तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट. इनकी कमी या ज्यादती होने से आपका नर्वस सिस्टम पूरा मुबतला होता, और होने से वो मरीज बिल्कुल लाखिर हो जाता, ना उठ सकता, ना बैठ सकता, ना चल सकता, ना बात कर सकता.
1: तो इसका तदारुक क्या है डॉक्टर? इसको कैसे, इसको ओवरकम कर सकते हैं?
0: एक तो आप देखना कि जो है गर्मी से कैसा आप अपने आप को जो है बचा सकते. अगर आप फैन भी अगर रहा तो बस है, ये जरूरी नहीं है कि एसी में जो है आप बैठ के सो रहे हैं. तो फैन भी अगर रहा तो जो है, क्योंकि आपको आप जानते होंगे एवापरेशन कॉजेस कूलिंग. तो जैसा हवा जो है अपने जिस्म पे पानी है उसको उड़ा देती है, तो उसकी वजह से आपको जो है कूलिंग जो है
1: रिलीफ
0: हो जाता, और जो है मरीज जो है बिल्कुल नॉर्मल हो जाता.
1: कुछ इसके लिए दवाएं वगैरह या कुछ?
0: अब देखिए, जब जब सोडियम या पोटेशियम हमको देखना पड़ता, हमारे पास जो है आले हैं जिससे हम ये जान सकते कि सोडियम की
1: डॉक्टर को दिखाने का मतलब यही है.
0: जी, और खून में
1: मैं सिर्फ एहतियाती तदाबीर के तौर पे बात कर रहा था.
0: नहीं, वो सही है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आदमी जो है किस तरह से जो है उसको इलाज करना. खाली जो है बीमार डाल के जो है लाखिर कर देना नहीं है. अब हमको उसको सोडियम या पोटेशियम का इन्फ्यूजन देते, जो जैसा सोडियम क्लोराइड बॉटल आप सुने होंगे, सलाइन बॉटल, तो सलाइन बॉटल देते. अगर पोटेशियम की कमी है तो पोटेशियम देते इंट्रावीनस, और उसको जो है फौरन जो है मॉनिटर करते.
1: तो यानी
0: इलेक्ट्रो
1: वो शख्स जो जिस जो भी इस तरह की
0: जी
1: हालत में गिरफ्तार है,
0: जी
1: तो वो डॉक्टर से रुजू होने के लिए

0: जी
1: उसमें क्या अलामत होती है उसकी?
0: अलामत ये होती है कि वो बहुत वीक हो जाते हैं, उनको बात करना नहीं आता, उनको ना उठना आता, ना बैठना आता, ना चलना आता, ना फिरना आता। तो हम फौरन दवाखाना ले जाके जो है उनके इलेक्ट्रोलाइट्स मेजर करके इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेस कर दिए, तो बिल्कुल नॉर्मल इंसान होता।
1: अच्छा, तो उसकी
0: आजकल
1: अलामत यही है कि
0: आजकल जो
1: वो
0: है सोडियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है,
1: इम्पोर्टेंट
0: अब
1: है।
0: सड़कों पे भी लिख रहे कि जो है ज्यादा मत इस्तेमाल करिए,
1: जी
0: क्योंकि इससे जो है जिस्म में पानी खींचता हो
1: सोडियम,
0: सोडियम, तो पूरा जिस्म जो है मोटा हो जाता और जो है ऑर्गन्स भी जो है खराब होते। तो जहां तक हो सका सोडियम आमतौर पे 5 से 10 ग्राम जो है
1: वो किन
0: रिक्वायरमेंट
1: चीजों
0: है।
1: में पाया जाता है?
0: ये आप कॉमन सॉल्ट जो
1: अच्छा,
0: अपन
1: वो
0: आप जानते हैं कि जो है जबान का जो जायका है वो जो है खाली सॉल्ट
1: तो
0: से।
1: कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए,
0: जी हाँ, कम से कम इस्तेमाल
1: उसकी कमी भी तो नुकसानदेह।
0: नहीं, कमी बोले तो देखिए आप जानते होंगे कि इंसान के लिए जैसा मशीन को जो है ऑयल जरूरी है, इंसान के लिए गिजा जरूरी है। गिजा जो
1: बहुत
0: है,
1: जरूरी है,
0: गिजा जो है आपकी बैलेंस्ड रहना।
1: बिल्कुल
0: बैलेंस का मतलब होता है विटामिन्स, मिनरल्स, एंटॉक्सिडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, एक मिकदार भी लिया जाता।
1: जी
0: एक डाइटिशियन होते
1: जी
0: हमारे
1: हाँ जी
0: ब्रांच
1: हाँ
0: में, एक डाइटिशियन है और डाइटिशियन लिख के देता हर बीमारी के लिए अलग।
1: हर हॉस्पिटल में
0: शक्कर
1: डाइटिशियन
0: की
1: भी होता
0: बीमारी
1: है।
0: है,
1: जी
0: उसका हम लिख के देते कि
1: जी
0: आपकी गजा जो है उसके लिहाज से लिखते। ये नहीं कि जो है
1: जी
0: ना आप लंदन की जो है गजा लिख रहे, हिंदुस्तान
1: यहाँ
0: के,
1: जो गिज़ा अवेलेबल है
0: और वो भी जो आप रोज खाते हैं।
1: और हम उसके आदि भी हैं,
0: जी हाँ, जिसके आदि हैं।
1: तो इसकी जो आप जो इसको डायग्नोस करते हैं वो किस तरह डायग्नोस करते हैं?
0: आसाबी कमजोरी के लिए हम जो है नर्व्स को जो है मेजर करते हैं। मतलब
1: अच्छा
0: ये कि जो है नर्व्स के कुछ टेस्ट रहते हैं, स्पेशल टेस्ट रहते हैं, जैसा कि जो है नर्व कंडक्शन वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रोमायो न्यूरोग्राफ एक एक मेथड है, इलेक्ट्रोमायो न्यूरोग्राफ, जिससे हम लोग इसकी वेलोसिटी,
1: अच्छा
0: जब ये जो रग है इसके ऊपर भी एक लेयर रहती, उसको मायलिन शीथ बोलते हैं। तो मायलिन शीथ से जो है कंडक्शन होता। तो आप रात में अगर आप सो रहे, कोई आदमी आपको टच किया, तो फौरन आप
1: फौरन
0: उठ
1: हाँ
0: जाते।
1: बिल्कुल,
0: क्यों? क्योंकि जो है आपकी रग जो है मुतासिर हुई है,
1: वो
0: तो
1: दिमाग को
0: फौरन जो है
1: फौरन
0: वो
1: कहला
0: दिमाग
1: देती
0: को
1: है।
0: जाती, दिमाग जो है बोलता चल उठ, कोई तुम्हारे को जो है डिस्टर्ब कर रहे। तो उसके लिए हम लोग नर्व कंडक्शन वेलोसिटी जो 60 से 90 मीटर्स है पर सेकेंड, तो वो मेजर करते। दूसरा क्या है, नर्व बायोप्सी करते। तीसरा क्या है, खून की जो है मायने करते हैं
1: जी
0: इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। चौथा क्या है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो दिमाग को जो है कि अतराफ रहती है उसको जो है मेजर करके देखते, उससे हमारे को तशखीस मिलती है।
1: तो ये उमूमन घरों में औरतें अक्सर कहा करती हैं कि भाई देखो जो मुझे अभी ये रगों की बीमारी है और ये रगों में जो है कुछ हो गया है फलाना है, तो वो सही है इसका मतलब
0: हाँ, बिल्कुल सही है
1: कि वो मुतासर होती
0: जी,
1: हैं।
0: बिल्कुल सही है। मगर वो उसको जो है उसके अलामत है, तो
1: अच्छा,
0: वो अलामत को जानना बहुत जरूरी है कि किस
1: तो
0: तरह से
1: वही
0: तशखीस करेंगे आप।
1: तो क्या उसमें बेहिसी पैदा होती है रगों में
0: नहीं,
1: टच करने
0: आप
1: पे?
0: ताजुब करेंगे कि जो है आपको वो शुद्धपन आ जाता,
1: अच्छा
0: यानी
1: वही,
0: सेंसेशन ही नहीं रहता।
1: हाँ मैं वही पूछ रहा था।
0: स्पेशली जब ये मुतासिर होते हैं, जब जो है रगा, समझे, रगों के कई वजह हैं, कई वजूहात हैं, जिससे जैसा कि विटामिन डिफिशियंसी है या जो है मिनरल्स हैं, जैसा कि आप सुने होंगे आजकल लेड जो जबान के टेस्ट को
1: जी
0: बढ़ाता है
1: जी
0: और नूडल्स में जो है डाल रहे हैं लोग,
1: जी
0: और जिससे, मगर वो लेड जो है हमारे बच्चों के लिए बहुत पॉइजन है,
1: अच्छा
0: क्योंकि लेड से जो है एनकेफेलोपैथी होती, यानी
1: अच्छा
0: बेहोश होते। लेड से जो है हाथ और पैर गिर जाते,
1: ये जो
0: जिसे हम,
1: बाजार में ये चीजें तैयार होती हैं उसमें वो इस्तेमाल होता है,
0: जी हाँ बिल्कुल होता,
1: घरों में तो नहीं होता शायद।
0: नहीं बाजार में होता तो, और जो है नूडल्स में जो है मिला रहे, तो मिला रहे क्यों, उसको टेस्ट आता। मगर
1: वो
0: हर चीज
1: नुकसानदेह
0: का, एक चीज याद रखिए आप, हर चीज अगर एतदाल में करे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं,
1: ज्यादा अगर होगी
0: मगर
1: तो
0: ज्यादा अगर
1: नुकसानदेह,
0: टेस्ट अच्छा रहा उसके लिए करे तो फिर बीमारी आयद होती।
1: तो उसका इलाज क्या होगा?
0: देखिए, अब जब भी जो है कोई बीमारी आती है तो उसके वजूहात मान, अगर विटामिन की डिफिशियंसी, जैसा विटामिन B1, उससे बेरीबरी होती और
1: जी
0: बिल्कुल लाखिर हो जाता, तो जब तक आप B1 नहीं दिए उस ठीक नहीं होता।
1: ठीक नहीं होता।
0: अब हम लोग टीवी में जो है एक ड्रग देते हैं आइसोनियाजाइड, वो
1: जी
0: जो है जाके रगों को मारती, रगों, तो उसको जो है पाइरिडॉक्सिन डिफिशियंसी होती, तो हम पाइरिडॉक्सिन उसके साथ देते, एक विटामिन है जो विटामिन B6 बोलते,
1: जी
0: तो वो जो है देते। फिर एक बीमारी है जिसे पेलेग्रा कहते, जिसमें जो है आपके पूरे हाथा पैरा कमजोर हो जाते, और वो पेलेग्रा जो है विटामिन

0: विटामिन बी बी टेन की जो है डेफिशिएंसी होती, जैसा
1: से होता
0: निकोटिन के
1: जी
0: एसिड कहते हैं हम, तो निकोटिन एसिड देने से वो ठीक हो जाता।
1: जी
0: फिर परनीशियस एनीमिया होता विटामिन B12 की कमी से, तो उसको B12 दे इंजेक्शन देना पड़ता हमारे को,
1: जी
0: तो उससे जो है पूरे नर्व्स रिपेयर हो जाते। तो
1: अच्छा
0: ये तो एक ही है। और दूसरी चीज़ जो है इन्फेक्शंस है, जो आमतौर पर जो है हम देखते हैं, जैसा टीबी है, लेप्रेसी, आप जुजाम तो सुने
1: जी जी
0: होंगे,
1: जी
0: तो ये से पूरा नर्वस सिस्टम तबाह हो
1: बेकार हो
0: जाता।
1: जाता
0: हाँ, वो टीबी हो या अपना जुजाम हो या जो है डिप्थीरिया हो या जो है कैंसर हो, उसमें भी जो है पूरे रगों में जो है चले जाते,
1: तो वो रगों में
0: तो
1: एहसास बाकी नहीं रहता।
0: नहीं रहता। तो उसके अलामत मैं बताता हूँ, मगर जो है पहले ये मालूम होना कि क्या क्या अब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं,
1: जी
0: बहुत ही कॉमन है अपने मुल्क में,
1: जी
0: जिससे रगा जो है आम तौर पर
1: मुतासर
0: मुतासिर,
1: होते हैं
0: और वो है ज़ैप्टिस, डायबिटीज मलाइटिस, गाउट, समझे? तो
1: ये
0: ये
1: गाउट भी आजकल आम लोगों में बहुत ज्यादा पाया जा रहा है।
0: गाउट एक ऐसी बीमारी है जो मारूसी है आमतौर पे, जो है ये इन्फेक्शियस नहीं है, एक आदमी से दूसरे को लगने की नहीं है, या जो है हवा में कोई जरासीम है उससे नहीं होती, ये
1: लेकिन ये
0: जेनेटिक
1: मौरूसी भी नहीं है डॉक्टर साहब।
0: मारूसी है, क्योंकि जो है गाउट एक यूरिक एसिड की जो है
1: जी हाँ,
0: यूरिक एसिड की वजह से होता, जो ज्यादा पैदा
1: और उसमें ये देखा गया है अक्सर कि लोग जो ये पूछते हैं कि क्या क्या खाना चाहिए, उसमें
0: होता।
1: तो हर चीज नहीं खाना है, कुछ दो चार चीजें छुटी हुई हैं जो
0: नहीं
1: खा
0: नहीं
1: सकते
0: नहीं क्या
1: हैं।
0: है, ये जो यूरिक एसिड आता है ना वो प्रोटीन से आता है,
1: जी
0: तो हम जैसा गोश्त है
1: नहीं
0: समझे,
1: खाना है उसको।
0: तो गोश्त जो है नॉन वेजिटेरियन फूड्स जो है हम अवॉइड करते हैं,
1: जी
0: जो यूरिक एसिड को जो है पैदा करता, तो ऐसी चीज़ें जो
1: अवॉइड
0: यूरिक
1: करना
0: एसिड
1: पड़ता।
0: वो अवॉइड करते।
1: और डॉक्टर साहब, आजकल जो बीमारी सबसे ज्यादा आम है, बहुत कॉमन है, हर तीसरा आदमी जिससे मुतासर है, वो है डायबिटीज। तो ये इस बीमारी से क्या संबंध है क्या?
0: बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। डायबिटीज, हिंदुस्तान जो है डायबिटीज कैपिटल है,
1: जी
0: कैपिटल इंडिया इज द कैपिटल ऑफ
1: डायबिटीज।
0: डायबिटीज इन द वर्ल्ड, तो पूरी दुनिया में जो है डायबिटीज हर तीसरा चौथा, जैसा आप बोले कि जो है शुगर
1: इसमें
0: का मरीज
1: मुतासर
0: है। आप जानते होंगे कि थायराइड की बीमारी सुने होंगे,
1: जी जी
0: और उसमें जो है एक हार्मोन रहता
1: जी
0: थायरोक्सिन, उसकी कमी से होता,
1: होता है
0: और ये जो डायबिटीज है ये इंसुलिन जो पैंक्रिया से सीक्रेट होता तो उसकी कमी से होता,
1: जी
0: तो अगर आप इंसुलिन दे दिए तो ही विल वो जो है बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता, ये मैं तो उसको बीमारी नहीं बोलता,
1: जी
0: मैं बोलता हूँ कि
1: तो वो
0: एक एक
1: इंसुलिन
0: डेफिशिएंट है, एक हार्मोन डेफिशिएंट डिजीज है।
1: तो वो रोज लेना पड़ता है
0: जी
1: फिर।
0: हाँ, तो जरूरी नहीं है कि जो है आप इंसुलिन ले, इंसुलिन के बजाय अद्वियात आ गए, गोलियां आ गई, वो गोलियां खाने से जो है इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ता है, उससे जो है आप ठीक हो जाते, ता हयात लेना पड़ता है।
1: यानी अक्सर लोग इसे बीमारी नहीं कहते,
0: जी हाँ
1: वो लोग कहते हैं कि बस ये गजाई आदतों के ऊपर मुनसिब होता है, या फिर वॉक करने से या ऐसा उससे फायदा होता है।
0: ये बीमारी गजब भी ढा सकती है,
1: जी
0: आप ये समझिए कि ये बहुत ही खतरनाक है अगर आप उसको कंट्रोल ना करें, उसको थामे नहीं। और सब में बड़ा आपका आपकी जबान है जो चटोरी है
1: जी जी जी
0: दिल
1: असल
0: को,
1: वही
0: आप
1: नुकसान
0: जानते हैं
1: होता
0: कि
1: है।
0: जो है ये बीमारी में जो है मीठी चीज़ों को अवॉइड करना पड़ता, खा वो गुलाब जामुन हो या डबल का मीठा हो या आइसक्रीम हो, हम जो है इनसे गुरेज करना पड़ता, इस पे इसके लिए आदमी को जो है बहुत ही
1: एहतियात करनी पड़ती
0: इम्पॉर्टेंट विल पावर रहना चाहिए, अगर विल पावर रहा तो वो जो है कंट्रोल कर सकता
1: तो इससे आसाब भी मुतासर होते हैं
0: है। पूरा
1: कोई।
0: पूरा नर्वस सिस्टम ऐसा कि, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस होती, डायबिटीज जो है एक स्लो पॉइजन है, तो आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता जो है आपके खून की नालियों में ये जो कार्बोहाइड्रेट जो खाते ना
1: जी
0: वो फैट बनता, फैट बन के जो है खून की नालियों में जाके जमा हो जाता, अगर दिल की नालियों में जमा हुआ तो हार्ट अटैक होता, दिमाग की नालियों में जमा हुआ तो फालिज होता, तो इस तरह से पूरे जिस्म को, और एक आम बीमारी है जिसे हम पेरिफेरल न्यूराइटिस कहते, पेरिफेरल बोले तो डिस्टल बोले तो बिल्कुल आखिरी हिस्सा जिस्म का, जैसा हाथ की उंगलियां हैं पैर के टोज हैं, वहां पर जो है पूरे ये रग इन्वॉल्व होते, क्योंकि यहाँ पे खून की सप्लाई जरा कम हो जाती,
1: जी
0: तो जब जो है ये इसमें जो है सुंदपना आता, चींटियां आती, आग जैसी जो है निकलती है पैरों के तलवों से, हाथों के जो है पाम से, ऐसा मालूम होता कि जैसा आग निकल रही है, तो ये जो है रगों की जो है बीमारी, जो रगा मर रहे, और सुंदपना मतलब कि जो है रग मर गई, जब सुंदपना आता तो

0: ग्लव एंड स्टॉकिंग एनेस्थीसिया मिलता, मतलब ये कि जो है हाथ का बीच के पोर्शन से लेके आपके उंगलियों तक शुद्ध हो जाता, बिल्कुल सेंसेशन नहीं रहता।
1: तब
0: और
1: इसका इलाज?
0: इसका इलाज बहुत आसान है। सबसे बड़ी चीज जो है, आपको बोला मैं कि जो है मीठी चीजें अवॉइड करना, मीठी चीजें दिल को लुभाती,
1: वो नहीं खाना।
0: तो उसको जो है आप जो है जहां तक आपके ये रहेंगी जद्दोजहद रहेंगी कि जिंदगी में कि जो है इसको मैं कम खाऊंगा, क्योंकि ये लोग जो है आमतौर पे दावतों में जो है कैसा
1: खा
0: भी जो
1: लेते
0: है
1: हैं
0: चोरी से खा लेते
1: जी,
0: हैं। तो मैं चाहूंगा कि ये जो मीठी चीजें हैं दिल को लुभाती
1: अवॉइड
0: मगर
1: करना।
0: मुश्किल हैं, मगर नामुमकिन नहीं।
1: अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब एक चीज़ जो आजकल मार्केट में है
0: जी
1: वो शुगर फ्री टैबलेट्स हैं जो चाय में इस्तेमाल
0: जी
1: होते हैं,
0: जी जी
1: या फिर शुगर फ्री स्वीट्स भी मिलते हैं,
0: जी
1: तो क्या वो भी नुकसानदेह हैं या उससे कोई नुकसान
0: नहीं,
1: नहीं होता?
0: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो अब आजकल तो जो है पत्तों से जो है निकाल रहे हैं, पत्तों से जो
1: जी,
0: है निकाल
1: शुगर
0: रहे हैं शुगर,
1: तो
0: और
1: वो
0: वो शुगर जो
1: नुकसानदेह नहीं
0: है,
1: है।
0: वो शुगर जो है नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल है, ये
1: हाँ
0: आर्टिफिशियल नहीं। तो आर्टिफिशियल को हम नए नेचुरल में बदले हैं आजकल की
1: तो वो
0: दुनिया में,
1: इस्तेमाल कर
0: वो कर
1: सकते हैं
0: सकते हैं। आप मीठा भी खा सकते हैं
1: जी,
0: मगर आप जिंदगी का उसूल,
1: इत्तेदाल के साथ।
0: हाँ बस इन जिंदगी का उसूल फॉलो करने से आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं आएगी। और शुगर की बीमारी तो बीमारी ही नहीं है अगर आप उसको कंट्रोल करें, आप उसको थामें, और जो है कार्बोहाइड्रेट जो है कम कर दे, और जो है अच्छी बैलेंस डाइट जिसके अंदर पूर्ण अपने विटामिन्स रहें, मिनरल्स रहें, एंटॉक्सिड्स रहें,
1: वो
0: और
1: सेहत
0: जो
1: के
0: है
1: लिए बेहतर है।
0: प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट एक इत्तेदाल में रहते, और वो डायटिशियन जो है लिख के देते कि शक्कर के मरीज किस तरह से जिंदगी गुजारना।
1: ये उसमें है कि वो आलू का इस्तेमाल ना करें, गड्ढे की तरकारियों का इस्तेमाल ना करें,
0: आप
1: ऐसी
0: जानते
1: चीजें
0: होंगे
1: जी।
0: कि जो है सबसे ज्यादा शुगर जो पैदा होता है आमतौर पे अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स, जैसा कि जो है आलू है, अरवी है, शलजम है, मूली है, गाजर है, जमीखंड है, बीटरूट है, ये
1: इसमें
0: सब
1: बहुत
0: चीजों
1: फायदा
0: को
1: होता है।
0: अवॉइड करना चाहिए। मगर सब में बड़ी चीज मैं ये बोलूंगा कि जो है आप रोज एक आधा घंटा अपने जिस्म के लिए, चुस्ती के लिए, रगों के जो है जिंदा रहने के लिए रोज वॉकिंग करें।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें योगा किस हद तक मुफीद होता है?
0: योगा जो है आप ताज्जुब करेंगे, मैं 1952 में मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करा जब मेरी किताबों में योगा का मेंशन नहीं था, और आज हर किताब मेडिसिन की जो बिल्कुल साइंटिफिक साइंस है उसके अंदर जो है योगा का चैप्टर है। तो योगा जिंदगी का जो है राज है, और वो हर आदमी को किसी तरह से भी 10-15 मिनट कम से कम अलोम विलोम, आपको बताता हूँ, आप परेशान हो जाना कि जो अलोम विलोम कुछ नहीं है, खाली डीप ब्रीदिंग है
1: उसका फायदा क्या है?
0: गहरी। अब देखिए आपसे तो मैं ज्यादा जो है ऑक्सीजन ले रहा हूं, जब गहरी सांस लेता हूं तो आपसे ज्यादा ऑक्सीजन ले रहा, जब ये ऑक्सीजन कहाँ जाती, मेरे दिमाग को, मेरे दिल को, मेरे गुर्दों को, और उससे जो है ये तमाम ऑर्गन्स कभी बीमार होते नहीं।
1: और उसमें वो कपालभाति भी है।
0: कपाल भारती भी है। देखिए हर चीज मैं आपको कहा कि जो है इत्तेदाल में करने से कोई नुकसान नहीं होता।
1: और ये जो फ्री हैंड एक्सरसाइज भी होती है तो वो
0: मैं
1: भी
0: तो बोलता हूं कि
1: फायदा।
0: आप जो फिजिकल ट्रेनिंग स्कूल में ड्रिल जो करते थे अगर वो कर लिए तो बस है, मगर कम से कम 15 या 20 मिनट अपनी सेहत के लिए एक्सरसाइज
1: देना जरूरी है।
0: जरूर।
1: नहीं, मेरा भी ऐसा ख्याल है डॉक्टर साहब, मैं भी, मेरा ऐसा मानना है कि एक इंसान जो अपनी ज़िंदगी गुजारता है तो एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए अगर वो एक आध घंटा आधा घंटा सुबह में अगर
0: जी
1: अपना उस अपने अपने आप पर अगर ध्यान दे, तो मैं समझता हूँ कि कई बीमारियों से वह महफूज रह सकता है।
0: मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ आपकी राय से, और मैं यही चाहूंगा कि मेरे सुनने वाले जो है हर रोज एक 15 मिनट भी अगर गुजारे, ये जरूरी नहीं है कि आप सड़क पे जाके फिरना, आप अपने घर में भी जो है चहलकदमी करें तो
1: जी
0: बस
1: जी
0: है।
1: तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी दावत पर अपनी गुनाह व मसरूफियतों के बावजूद तशरीफ़ लाए और इतनी कारामत बातें हमारे सुनने वालों को बताएं जो आजकल का जो हमारी ज़िंदगी का मेयार है और हम जो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं, और नादानिस्तगी में भी हम ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह होती हैं, जैसा आपने बताया, अगर इस पर हमारे सामईन अमल करेंगे तो वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब अर्ज़ है।
0: आधा वर्ष
2: न्यूरोलॉजी बहुत ही अहम टॉपिक और बहुत ही मालूमाती इंटरव्यू अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर रामपत प्रताप माथुर से, डॉक्टर माइक पर सिलसिले के तहत।
3: हैदराबाद का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है,

0: हैदराबाद तो बहुत तेजी से तरक्की कर रहा, यहाँ पे फ्यूचर सिटी भी बनने वाला है। यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंगा बन रही, कंपनियां खोल रही, लोगों की सहूलत के वास्ते रोडा, फ्लाईओवर और ब्रिजा बनाते जा रहे। जिधर देखो उधर महंगे महंगे गाड़ियां भागते हुए दिख रही। तरक्की तो बहुत हो रही मगर एक्सीडेंटा भी हो रहे। ट्रैफिक पुलिस और लोगों की भलाई के वास्ते काम करने वाले तंजीमा अपनी पब्लिक को ट्रैफिक रूल्स बता बता के थक जा रहे। हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, एक्सीडेंटों से बचो बोल रहे, मगर अपने हैदराबादियां हैं कि सुन रहे नहीं। चालाना मारे तो भी पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे को बस इतना ही बोलना है, रोडों पे गाड़ियां नको भगाओ, सीट बेल्ट और हेलमेट पहन के गाड़ियां चलाओ। अपन जब घर से निकलते तो अपने घर वाले अपने घर को आने का इंतजार करते रहते। अगर बगैर हेलमेट के और बगैर सीट बेल्ट के अगर गाड़ियां चलाएंगे तो घर को तो बाद में, पहले उस्मानिया नहीं तो गांधी को पहुंच जाते। रोड सेफ्टी अपने साथ साथ दूसरे लोगों के वास्ते भी बहुत जरूरी है। तो रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करो, घर को सही सलामत पहुंचो, हेलमेट और सीट बेल्ट पहन के गाड़ियां चलाओ।
1: आप सुन रहे हैं 101.9 FM MHz पर उर्दू प्रोग्राम नैरंग। नैरंग प्रोग्राम आगे हम बढ़ाते हैं और आपको सुनाते हैं गीत श्री लेख गाते जा। आज हम आपको गीत भी सुनाएंगे और कुछ बातें करेंगे रक्षाबंधन पर। सामान्य रिश्ते हमारी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया होते हैं। माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, अजीज वकारिब हमारी जिंदगी में मोहब्बत और खुशियों के रंग भरते हैं। इन्हीं रिश्तों में बहन और भाई का रिश्ता भी अपनी एक खास अहमियत रखता है। कभी भाई अपनी बहन का मुहाफिज बनता है तो कभी बहन अपने भाई की कामयाबी और खुशहाली के लिए दुआएं करती है। रक्षाबंधन के मौके पर बहन अपने भाई की कलाई पर खूबसूरत राखी बांधती है। राखी सिर्फ एक धागा नहीं बल्कि मोहब्बत, खलुस और रिश्ते की मजबूती की अलामत समझी जाती है। बहन अपने भाई की सलामती, कामयाबी और खुशियों के लिए दुआ करती है, जबकि भाई अपनी बहन की इज्जत, खुशी और हिफाजत का ख्याल रखता है।

इस त्योहार की खूबसूरती सिर्फ राखी बांधने में नहीं होती, बल्कि ये त्योहार एक दूसरे की हिफाजत करना, एक दूसरे की पहचान और सभी रिश्ते, यानी सिर्फ राखी बांधने के लिए ही नहीं बल्कि सब एक दूसरे से आपस में खलूस और मोहब्बत से मिलते हैं, सब एक जगह होते हैं कहीं दूर भी हो। आज का दौर हम देखते हैं कि यानी बहुत दूर कोई कहीं रहते हैं, कोई कहीं रहते हैं और अपनी अपनी मसरूफियत सबके लिए है। इसके बावजूद भी जब अपना वक्त निकाल कर भाई बहन के लिए जाता है या बहन भाई के लिए आती है तो ये जाहिर करता है कि कितना यानी खलूस को जाहिर करता है, ये बात खलूस को जाहिर करती है, ये यानी ये फासलों को मिटाती है।

हम बात कर रहे हैं रक्षाबंधन की। समीन, इस त्यौहार की खूबसूरती सिर्फ राखी बांधने तक महदूद नहीं। इस मौके पर खानदान के अफराद एक दूसरे से मिलते हैं, खुशियां बांटते हैं, पुरानी यादों को ताजा करते हैं। बहन भाई बचपन के वो दिन याद करते हैं जब कभी मामूली सी बात पर झगड़ा होता था, कभी एक दूसरे की शिकायत की जाती और कभी दोनों मिलकर शरारतें करते। बचपन में बहन भाइयों के दरमियान होने वाली नोक झोंक भी इस रिश्ते को मजीद खूबसूरत बना देती है। कभी बहन भाई की चीज छुपा देती है तो कभी भाई बहन को चिढ़ाता है, लेकिन अगर कोई बाहर वाला इनमें से किसी एक को परेशान करता है तो दोनों एक दूसरे के साथ खड़े नजर आते हैं। यह इस रिश्ते की खास बात है कि मोहब्बत के साथ साथ एक दूसरे के लिए फिक्र और अपनायत भी मौजूद होती है।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जा। रक्षाबंधन के इस खूबसूरत मौके पर हम अपने रिश्तों की कद्र करने का

गीत सुरीले गाता जो अभी आप सुन रहे थे रक्षाबंधन की कुछ बातों के साथ। इसी के साथ यानी इसी गीत के साथ प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जाओ और हमारा नैरंग प्रोग्राम भी हमें खत्म करने की अब वक्त हमसे इजाजत चाहता है। चलते चलते हम आपको सुना दें पयाम-ए-शब पेशकश है नदीम अख्तर ज़ैदी की।

0: या नहीं। मोहब्बत इंसान को बुलंद भी करती है मगर बेबसीरत मोहब्बत इंसान को आजमाइश में भी डाल सकती है। अजीम मकासिद के लिए पहले दिल को खालिस बनाना जरूरी है क्योंकि खुलूस के बगैर कोई कुर्बानी मुमकिन नहीं होती। दिल अल्लाह सच्चाई और नेकी के सुपुर्द कीजिए और इंसानों से मोहब्बत जरूर कीजिए मगर अपने इज्जत शऊर और खुददारी को कभी कुर्बान न कीजिए। यही मुतवाजन मोहब्बत और कामयाब जिंदगी का रास्ता है।
1: नदीम अख्तर जैदी से पैगाम शब अभी आप सुन रहे थे। इसी के साथ उर्दू प्रोग्राम नए रंग खत्म करने की आरजे नूर अफशां को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए 101.9 FM मेगाहर्ट्ज़ पर रोजाना रात 9:30 बजे उर्दू प्रोग्राम नए रंग। आप सुनते रहिए और हमें अब दीजिए इजाजत।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 एफएम मेगाहर्ट्ज़ पर। इस वक्त रात के 11 बजने ही वाले हैं और कुछ देर में समाचार दिल्ली से प्रसारित होंगे।

0: 21 भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, कल काठमांडू पहुंचे उस क्षेत्र से जहां पर ये हादसा हुआ, और कल हमारे राजदूत उनसे मिले, उनका हालचाल पूछा और हमारी एम्बेसी ने उनके लिए ये ट्रैवल अरेंजमेंट बनाया। आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। उसके अलावा 63 भारतीय नागरिक जो त्रिशूली हाइड्रो पावर में काम करते हैं, त्रिशूली 1, उनको भी वहां से बचाया गया है। 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल की तरफ आ चुके हैं और ये सभी लोग सुरक्षित हैं।
1: इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। 10 टन मानवीय सहायता लेकर तीसरी उड़ान काठमांडू के लिए रवाना हो गई है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अब भी लापता हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है।

0: और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर द्वारा भेजे जा सकते हैं। इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट 2026 की 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के किसानों को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार उनके हितों से कोई समझौता नहीं करेगी और किसी भी देश के साथ किए गए हर समझौते में किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा। अमृतसर जिले के बाबा बकाला में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दल यह झूठा प्रचार कर रहे हैं। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापी गई औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर वार्षिक आधार पर 6.7% रही। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इस दौरान औद्योगिक गतिविधि में अच्छी गति से वृद्धि जारी रही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज भारत में यूरोपीय संघ के निवर्तमान राजदूत हर्वे डेल्फिन को विदाई दी। डॉ जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत बनाने में निवर्तमान राजदूत के योगदान की सराहना की। मौसम विभाग ने ओडिशा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, मैदानी पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश हुई। कल राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। भारत के वेल्वन सेंथिल कुमार आज रात PSA बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकस से खेलेंगे। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया। India has stepped up humanitarian assistance to Nepal affected by flash floods as the third flight carrying 10 tons of humanitarian assistance has departed for Kathmandu. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar informed this in a social media post. The minister said that the assistance includes portable generator sets, dignity kits, food packets and water purification tablets. Dr. Jayashankar said that an 11-member team of doctors, paramedics and Reiki team for tunnel rescue operations is also on board. He also reiterated India's support to Nepal's ongoing relief and rescue efforts. Earlier, India had sent more than 47 tons of emergency relief supplies in two flights. Meanwhile, the death toll from devastating flash floods in Nepal and Tibet has risen to 547, with 1,545 people still missing as rescue teams search riverbanks and isolated settlements for survivors and bodies swept downstream. Authorities have evacuated more than 800 people from affected districts and issued fresh warnings after a 5.1 magnitude earthquake struck southwestern China, raising fears of further flooding. India has launched a major rescue and relief operation. The Ministry of External Affairs has said that 320 Indian nationals remain uncontactable or are reportedly missing following the flash flood tragedy on Wednesday. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said around 100 people of Indian origin holding other nationalities also remain uncontactable. Addressing the media in New Delhi today, Mr. Jaiswal said that 63 Indian nationals working at Trishuli 1 hydropower project were rescued from the affected area. Mr. Jaiswal informed the media that 21 Indian nationals from Tamil Nadu who had reached Kathmandu from the flood-affected area yesterday have arrived in New Delhi this afternoon. External Affairs Minister Dr. Jaishankar met the group of 21 pilgrims belonging to Tamil Nadu in New Delhi who were rescued from Nepal. Later, talking to the media, he thanked the government of Nepal and its army for the rescue efforts. On the Chinese side, External Affairs Ministry spokesperson Jaiswal said that around 400 Indian nationals are safe and in contact.

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
1: नमस्कार. मार्केट मंत्र की ताजा अंक में आपका स्वागत है. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं. हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए आज इस स्टूडियो में आमंत्रित हैं देश के आर्थिक मामलों के जाने माने विशेषज्ञ एके भट्टाचार्य. श्री भट्टाचार्य जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: नमस्कार, धन्यवाद.
1: आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेस राइज, सेंसेक्स एड्स ओवर 300 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स नियर 24,200 लेवल. इंडियाज इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोज बाय 6.7% इन जुलाई दिस ईयर एंड इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सर्ज टू अ रिकॉर्ड हाई ऑफ 729.3 बिलियन यूएस डॉलर्स एज ऑफ द प्रीवियस वीक.
1: घरेलू शेयर बाजार में प्रमुख सूचकांक लाभ के साथ हुए बंद. सेंसेक्स 300 अंक से अधिक उछला. निफ्टी 24,200 के स्तर के नजदीक बंद हुआ. देश के औद्योगिक उत्पादन में इस वर्ष जुलाई में 6.7% की वृद्धि हुई और देश का विदेशी मुद्रा भंडार 21 अगस्त को समाप्त सप्ताह में बढ़कर अब तक के सर्वोच्च स्तर 729 अरब 30 करोड़ डॉलर पर पहुंचा.

0: आईआईपी जो है ये दर्शाती है कि जो एसेंशियल मार्केट में जो डिमांड जो है आपकी, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो डिमांड जो है वो अभी भी काफी स्वस्थ हैं, काफी अच्छे हैं, और आने वाले महीनों में मुझे लगता है कि अगर ये ट्रेंड को मेंटेन करें तो हमें चिंता की बात शायद थोड़ी कम होगी। जो हम पहले जब वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट के बाद, बारिश न आने के बाद में जो हमारा जो आउटलुक तो था वो इतना था, और सबसे बड़ी बात ये है कि इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे जीडीपी ग्रोथ जब आंकलन आएगी, देन फर्स्ट क्वार्टर का और सेकंड क्वार्टर का, हम काफी उसका एक एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा।
1: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 21 अगस्त को समाप्त सप्ताह के दौरान 12 अरब 40 करोड़ डॉलर बढ़कर अब तक के सर्वोच्च स्तर 729 अरब 30 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार इस दौरान विदेशी मुद्रा भंडार के सबसे बड़े घटक विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 9 अरब 40 करोड़ डॉलर बढ़ी और ये स्तर 591 अरब 30 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। वहीं स्वर्ण भंडार में 2 अरब 80 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी हुई है और ये बढ़कर 114 अरब 20 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के सुरक्षित भंडार में 26 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई और ये 4 अरब 90 करोड़ डॉलर के आसपास पहुंच गया है। उधर विशेष आहरण अधिकार यानी एसटीआर में 112 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई और ये 18 अरब 80 करोड़ डॉलर के स्तर तक पहुंच गया है। एकेबी रिकॉर्ड स्तर पर मुद्रा भंडार अपना पहुंचा है, क्या दर्शा रहा ये और किन कारणों से इसमें यह बढ़ोतरी हम देख रहे हैं?
0: देखिए, अगर जब जब जब पश्चिम एशियाई में जब युद्ध छिड़ा, जब
1: जी
0: उसके बाद तेलों के दाम बढ़े, तब हमारे पास उस समय करीबन 722 बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा कोष था। उसके बाद ये काफी नीचे आ गया था, करीबन 680 तक, 685 तक आ गया था। और आपको ये शायद नोटिस करेंगे, ये नंबर जो है ये 21 अगस्त के नंबर हैं, और 21 अगस्त तक हमारी जो नई जो स्कीम्स जो थी, एफसीएनआरबी के नीम्स, जो एनआरआई के जो पैसे जो आ रहे थे, वो पैसे काफी अंदर आए हैं। करीबन 50 बिलियन डॉलर या 56 बिलियन डॉलर की पैसे जो आए, अगस्त 31 तक उसका अवधि है, वो आएंगे। मुझे लगता है कि ये अभी नहीं है और भी थोड़ा बढ़ेगा, और ये बढ़ने का मतलब ये है कि हमारी जो मंथली इम्पोर्ट की जो बिल जो है वो 10 महीने नहीं, शायद 11 से 12 महीने तक की हमारी जो कैपेसिटी है उसमें वृद्धि होगी। ये एक मैक्रो इकोनॉमिक दृष्टिभंगी से एक्सटर्नल सेक्टर की ये जो छवि जो है, ये मार्केट के लिए, इकोनॉमी के लिए ये एक पॉजिटिव एक सिग्नल है।
1: यहाँ पर श्रोताओं के हित में एफसीएनआरबी ने किस तरह से भूमिका निभी, बहुत संक्षेप में ये
0: एनआरआई एनआरआई को एक एक फैसिलिटी दी थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कि वो अपनी जो विदेश के मुद्रा यहाँ पे वो जमा कर सकते हैं, और उसका जो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक सब्सिडी भी देगी, जिससे कि और जो काफी कमर्शियल बैंकों ने का उनका लेवरेज देकर वो पैसा यहाँ पे ला सकते हैं। तो जो जो समस्या नॉर्मल जो जो जो जो एफसीएनआर एनआरआई डिपॉजिट में होता है कि एक्सचेंज रेट के जो तारतम्य जो होता है उससे ज्यादा इंसेंटिव वाइज नहीं होते हैं, इस इंटरेस्ट रेट की जो जो जो स्ट्रक्चर जो थी वो उससे एनआरआई ने काफी
1: लाभ
0: उनका लाभ उठाया, और इसीलिए करीबन 56 बिलियन डॉलर का पैसा अभी तक आ चुका है।
1: जी,
2: In more news, Prime Minister Narendra Modi has said that the Jan Dhan Yojana has delivered unprecedented scale and transformative outcomes with an unparalleled impact in the last 12 years. In a social media post, Mr. Modi said that the Jan Dhan Yojana is playing a significant role in advancing financial inclusion and empowering people across the country. Under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, more than 59 crore accounts have been opened so far, with total deposits amounting to 3,17,000 crore rupees. The scheme was launched by Prime Minister Modi on this day in 2014. As the world's largest financial inclusion initiative, the scheme continues to redefine access to banking for all Indians. We have a report.
3: अंडर द प्रधान

0: Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, more than 59 crore accounts have been opened so far, with total deposits amounting to 3,17,000 crore rupees. As the world's largest financial inclusion initiative, the scheme continues to redefine access to banking for all Indians. The average deposit per account is 5,356 rupees. Under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, 78% of the accounts have been opened in rural or semi-urban areas, and approximately 56% of the accounts are owned by women. Over 41 crore rupee cards have been issued to Jan Dhan account holders. The scheme has also empowered millions, particularly the marginalized sections, to access banking and financial services to improve their socio-economic conditions. Due to initiatives like Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, India's financial inclusion index has risen from 53.9 in 2018 to 67 this year, showcasing deeper access to credit, insurance, saving and digital payments. Anupam Mishra, Akashvani News, Delhi.
1: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा कनाडा के वित्त और राष्ट्रीय राजस्व मंत्री फ्रांस्वा फिलिप शैंपेन के बीच कनाडा के टोरंटो में आर्थिक और वित्तीय वार्ता संपन्न हुई. दोनों पक्षों ने संयुक्त बयान में कहा कि यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच इस वर्ष मार्च में नई दिल्ली में हुई बैठक में द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय सहयोग को मजबूत करने के लिए किए गए वादे को आगे बढ़ाती है. दोनों देशों ने 2026 के अंत तक भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत पूरी करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता को दोहराया. मंत्रियों ने वैश्विक आर्थिक घटनाक्रमों और घरेलू नीतिगत प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया. उन्होंने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करने तथा दोनों देशों के बीच वित्तीय और वाणिज्यिक संबंधों का विस्तार करने के तरीकों पर चर्चा की. मंत्रियों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 70 बिलियन डॉलर कनाडाई डॉलर तक बढ़ाने की इच्छा को भी दोहराया. भारत ने जल्द से जल्द द्विपक्षीय निवेश संधि पर बातचीत शुरू करने की अपनी तत्परता व्यक्त की. और आगे बढ़ते हैं
2: टू द एशियन मार्केट्स
1: और नजर डालें एशिया के प्रमुख बाजार दक्षिण कोरिया पर. वहां कोस्पी सूचकांक 1.8% बिकवाली के दबाव में नीचे आ गया. उधर जापान के निक्की 225 सूचकांक में 0.4% की वृद्धि हुई.
2: In more news, Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said renewed diplomacy with Washington remains possible if the US changes its approach and abandons coercion. Ms. Araghchi said in a social media post that the US should build trust, speak respectfully, acknowledge our rights and uphold commitments. He also described recent talks with Qatar's Prime Minister and Foreign Minister Sheikh Mohammed bin Al Thani as productive and creative. Moving on to the crude oil market, global crude oil prices eased today. Brent crude was trading 0.5% down at $89.30 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 0.8% lower at $82.84 per barrel when reports last came in.
1: आइए श्रोताओं आपको लिए चले अंतिम चरण में सर्राफा बाजार. भारतीय सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक 0.7% बढ़कर 1,59,578 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था. वहीं चांदी 1.8% बढ़कर 2,43,892 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी. और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से के भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
3: नमस्कार.
2: धन्यवाद. And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic stock market indices rise. Sensex adds over 300 points. Nifty settles nearly 24,200 level. India's industrial output grows by 6.7% in July this year. And India's foreign exchange reserves surge to a record high of $729.3 billion as of the previous week. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 MHz पर। कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है और अभी आपके साथ है आपका दोस्त शमीम। तो चलिए दोस्तों, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खूबसूरत से गीत के साथ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं।
1: भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच करीबी, बहुआयामी और बढ़ते राजनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देगी। चर्चा के दौरान आपसी सहयोग के कई इलाकों को शामिल किए जाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल में विनाशकारी बाढ़ त्रासदी के बाद अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। इनमें त्रिशूली एक परियोजना के 63 कर्मचारी और तमिलनाडु के 21 व्यक्ति शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि 320 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है और वे लापता हैं। मंत्रालय ने बताया कि कल 149 लोग चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच गए हैं। उधर चीन की तरफ लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और भारतीय दूतावास उनके संपर्क में है और उन्हें वहां से निकालने के लिए काम कर रहा है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अब भी लापता हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। उधर नेपाल में आई अचानक बाढ़ के बाद वहां फंसे महाराष्ट्र के 290 लोगों के सुरक्षित होने की पुष्टि हुई है, जबकि 60 लोगों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। आपदा के समय नेपाल में महाराष्ट्र के जिन 395 लोगों के मौजूद होने की जानकारी मिली थी, उनमें से 105 भारत लौट रहे हैं, जबकि राज्य नियंत्रण कक्ष का बाकी 290 लोगों से संपर्क हुआ है। वे सुरक्षित हैं, लेकिन वहीं फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के कल 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में

बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। 12:11:10 और ये वक्त कार्यक्रम निशिगंधा का। निशिगंधा में सबसे पहले जो गीत आप सुनने वाले हैं उसे हमने लिया है फिल्म कुदरत से, और 1981 की फिल्म है ये कुदरत। कहानी का लेखन और निर्देशन चेतन आनंद साहब का रहा। मुख्य भूमिकाओं में फिल्म में आपको दिखेंगे राजेश खन्ना और हेमा मालिनी, जबकि फिल्म में सहायक भूमिकाओं में प्रिया राजवंश, राजकुमार और विनोद खन्ना भी दिखे। गीत जो आप सुनने जा रहे हैं, संगीतकार हैं आरती बर्मन और इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने। लता जी की आवाज में बेहद ही मधुर सा कर्णप्रिय ये प्यारा सा गीत आप सबके नाम। आकाशवाणी गोल्ड, अंजलि है आपके साथ।

रात के सफर पर जब चल निकलेंगे तो कितनी ही बातों का, यादों का, जज्बातों का, खुशी का, गम का अफसाना छिड़ेगा और बस दिल में महसूस होगी कहीं गुदगुदाहट तो कहीं कसक और टीस। बस इन पलों को जीते हुए पूरा करेंगे निशिगंधा का ये हसीन सा सफर। सफर हंसी इसलिए क्योंकि जब आप सब साथ होंगे और साथ अच्छा हो तो सब कुछ भला ही लगता है, चाहे वो कड़वे पल हो या हंसी खुशी से लबरेज वक्त। जी हाँ, और अगला गीत जो आप तक पहुंच रहा है निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा की 1981 में बनी त्रिकोणीय प्रेम पर आधारित मूवी सिलसिला से। फिल्म सिलसिला में अमिताभ, रेखा, संजीव कुमार, जया भादड़ी और शशि कपूर मुख्य किरदारों में दिखे और फिल्म का जो संगीत पक्ष था ना वो भी बहुत ही रोचक रहा। कुल 7 गाने इस फिल्म में रहे। फिल्म में संगीत किसी फिल्मी संगीतकार के बजाय प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया और प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा ने दिया। जो गीत आप सुनेंगे उसके बोल लिखे हैं जावेद अख्तर साहब ने। तो चलिए, ये एक और खूबसूरत सा नगमा आप तक पहुंच रहा है। फिल्म कौन सी है? जी हाँ, फिल्म है सिलसिला और मुझे लगता है कि आप भी इस गीत को बेहद रात के इस हसीन और खूबसूरत से माहौल में काफ़ी पसंद करेंगे। लता जी की आवाज़ में है ये गीत और इस गीत का जो संगीत तैयार किया है शिव हरि ने और गीत के बोल तो आपको बताया है जावेद अख्तर साहब के हैं।

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और इस वक्त निशिगंधा का ये हसीन सा सफर हम लोग यहाँ पर तय कर रहे हैं। अंजलि है आपके साथ और गीत जो आपने सुना था फिल्म महान से था, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में, और इस गीत का म्यूजिक कंपोज किया था आर डी बर्मन साहब ने, गीत लिखा था अनजान ने। और फिल्म किसके डायरेक्शन में बनी थी ये महान मूवी, 1983 में रिलीज हुई थी एस रामानाथन के डायरेक्शन में। अब जो गीत आप सुनने जा रहे हैं 1981 में एक प्रेम कहानी पर आधारित फिल्म एक दूजे के लिए फिल्म से है और फिल्म के डायरेक्टर के बालाचंदर रहे। कमल हासन और रति अग्निहोत्री इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में दिखे और जो इस फिल्म के गायक थे ना SP बालासुब्रमण्यम, उनकी भी ये पहली हिंदी फिल्म थी और इसके बाद तो उन्होंने बहुत सारी हिंदी फिल्म्स में प्लेबैक किया और बहुत ही लोगों के दिल में दिमाग में उनकी जो आवाज़ थी, उनकी जो एक स्मूथ सी आवाज़ है, बहुत ही जैसे बोलते हैं मधुर सी, दिल को छूने वाली, दिल की गहराइयों में उतर जाने वाली आवाज़ लोगों ने, सुनने वालों ने बेहद पसंद की। और उनकी गायकी के लिए इस फिल्म में एक दूजे के लिए फिल्म में जो उन्होंने गायन किया, उनकी गायकी के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही शानदार सा नगमा लता मंगेशकर और SP बालासुब्रमण्यम की आवाज़ में।

बहुत ही, जैसे बोलते हैं ना, दिल में उतर जाने वाला गीत था एक दूजे के लिए फिल्म से, और दर्शकों को ये फिल्म भी बहुत पसंद आई थी, और गाने भी इसके, जैसे फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट थी ऐसे गाने भी बहुत ज़्यादा, इस फिल्म का म्यूज़िक भी हिट हुआ था। और अब आप तक पहुंच रहा है एतबार फिल्म से एक बहुत ही, ये गीत भी जैसे मुझे लगता है आपको भी बहुत पसंद होगा, 1985 में रिलीज़ हुई थी ये फिल्म, किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है, एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म रही। राज बब्बर, डिम्पल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय मुख्य भूमिकाओं में दिखे। बप्पी लहिरी जी ने म्यूज़िक कंपोज किया था इसके गीतों का, और इस गीत को जो आप तक पहुंच रहा है भूपिंदर सिंह और आशा भोसले की आवाज़ में आप सुनेंगे, और गीत के जो बोल हैं कमल हसन कमाल के और फारूक कैसर के हैं। तो चलिए देर ना करते हुए सुन लिया जाए ये गीत, किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है, फिल्म एतबार।

सागर सरहदी के निर्देशन में बनी 1982 की फिल्म बाजार से ही आपने गीत अभी सुना, लता मंगेशकर और तलत अजीज साहब की आवाज में। फिल्म अगर आपने देखी हो तो सभी कलाकारों का अभिनय कौशल देखते ही बनता है। संगीत की धुनों से इन गीतों को सजाया था। इस फिल्म के जो गीत थे मोहम्मद जहूर खयाम ने, और गीतकार रहे मीर तकी मीर, मिर्जा शौक, बशर नवाज। और फिल्म में समता पाटिल, नसीरुद्दीन शाह, फारूक शेख ने मुख्य किरदारों को निभाया था। तो बहुत ही, जैसे बोलते हैं ना, रात के इस आलम में इस तरह के गीत दिल को किस तरह का सुकून देते हैं, ये तो सुनने वाले खुद बता सकते हैं, बयां कर सकते हैं। और अगला जो गीत है वो भी बहुत ही दिल की गहराइयों में उतर जाने वाला गीत है। फिल्म साथ साथ से 1982 की हिट ड्रामा मूवी रही, जिसमें फारूक शेख और दीप्ति नवल मुख्य भूमिकाओं में दिखे। पटकथा और निर्देशन रहा फिल्म में रमन कुमार का, गीत संगीत जबरदस्त रहा और फिल्म भी काफी मनोरंजक रही। चित्रा सिंह और जगजीत सिंह के गाए गीत दिल को छू गए। तो जावेद अख्तर साहब के लिखे हुए गीत और संगीत तैयार किया कुलदीप सिंह ने। तो सुन लेते हैं फिल्म साथ साथ से गीत जगजीत सिंह की आवाज में।

कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार और उसके बाद समाचारों के बाद 1:10 पर आप और मैं फिर होंगे साथ साथ यही आकाशवाणी गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं।
1: भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच करीबी, बहुआयामी और बढ़ते राजनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देगी। चर्चा के दौरान आपसी सहयोग के कई इलाकों को शामिल किए जाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल में विनाशकारी बाढ़ त्रासदी के बाद अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। इनमें त्रिशूली एक परियोजना के 63 कर्मचारी और तमिलनाडु के 21 व्यक्ति शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि 320 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है और वे लापता हैं। मंत्रालय ने बताया कि कल 149 लोग चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच गए हैं। उधर चीन की तरफ लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और भारतीय दूतावास उनके संपर्क में है और उन्हें वहां से निकालने के लिए काम कर रहा है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग लापता हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। उधर नेपाल में आई भयानक बाढ़ के बाद वहां फंसे महाराष्ट्र के 290 लोगों के सुरक्षित होने की पुष्टि हुई है, जबकि 60 लोगों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। आपदा के समय नेपाल में महाराष्ट्र के जिन 395 लोगों के मौजूद होने की जानकारी मिली थी, उनमें से 105 भारत लौट रहे हैं, जबकि राज्य नियंत्रण कक्ष का बाकी 290 लोगों से संपर्क हुआ है। वे सुरक्षित हैं लेकिन वहीं फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के कल 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन परियोजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्य बल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर द्वारा भेजे जा सकते हैं। इस बीच राष्ट्रीय

एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। रात के अंधेरे, रात के गलियारे, यादें मानो तेजी से दौड़ी आ रही हैं, एक के बाद एक, थमने का नाम ही नहीं लेती। ऐसे में आप अकेले हैं तो ये यादें बहुत सताती हैं, जिनसे कभी आप आबाद थे, यथार्थ में आबाद तो अभी भी हैं, ख्यालों में, ख्वाबों में, यादों में, बातों में, जहन में, दिलो दिमाग में। खैर, जब जब रातें होंगी ये मन का अंधियारा फैलेगा तो दुखती रगों को जरूर छुएगा। दुखन, ये घुटन, ये चुभन, कसक तो बहुत उठेगी। दुखती रगों को छूती ये यादें टीस तो बहुत देंगी। यहां ये बात जरूर कहनी होगी कि भाई, दुख निकल जाए, बह जाए, बट जाए, यही इसका सबसे बढ़िया मरहम है। तो चलिए यादों की इन गांठों को खोलते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ बांटते हैं और एक खुशनुमा माहौल से सहला लेते हैं इन दिल के जख्मों को सुहाने गीतों के जरिए, गीत सुहाने में। आकाशवाणी गोल्ड 100.1, अंजलि है आपके साथ।

लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी साहब को आपने सुना दिल तेरा दीवाना फिल्म से। कोई कहता है प्यार नशा बन जाता है, कोई कहता है प्यार नशा बन जाता है, कोई कहता है प्यार सजा बन जाता है, पर प्यार करो अगर सच्चे दिल से तो वो प्यार जीने की वजह बन जाता है। माया फिल्म में लता जी और रफी साहब।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

और जो अब गीत आप सुनने जा रहे हैं बहुत ही जैसे आपके दिल को पसंद आएगा, मिस मैरी फिल्म से है, लता जी की आवाज़ में और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में। दौलत नहीं, शोहरत नहीं, ना वाह चाहिए, कैसे हो बस दो लफ्ज़ों की परवाह चाहिए। बस यही करने से चूक जाते हैं हम, बड़ी बड़ी हसरतें, इच्छाएं, तमन्नाएं लगा बैठते हैं ज़िंदगी से। पर क्या है ज़िंदगी, कोई समझ ही नहीं पाया। हाँ, बयां बहुत कुछ किया गया है इसके बारे में। कभी कभी जिंदगी एक पल में गुजर जाती है और कभी कभी जिंदगी का एक पल नहीं गुजरता। सोच भले अलग अलग हो पर इसी उतार चढ़ाव के साथ गुजर जाती है जिंदगी, क्योंकि वक्त जनाब बड़ा बलवान है, किसी के रोके रुका है कभी। वक्त रहता नहीं कहीं टिककर, आदत इसकी भी आदमी सी है।

तमन्नाओं के ये दिए जलते रहेंगे, मेरी आंखों से आंसू निकलते रहेंगे। आप शमा बनके दिल में रोशनी तो करो, हम तो मोम बनकर यूं ही पिघलते रहेंगे।

उम्मीद वक्त का सबसे बड़ा सहारा है, अगर हौसला है तो हर मौज में किनारा है। रात तो वक्त की पाबंद है ढल जाएगी, रात तो वक्त की पाबंद है ढल जाएगी, देखना ये है चिरागों का सफर कितना है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्ज़ियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्ज़ियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। भारत और उज़्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं।
1: भारत और उज़्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच करीबी, बहुआयामी और बढ़ते राजनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देगी। चर्चा के दौरान आपसी सहयोग के कई इलाकों को शामिल किए जाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज़्बेकिस्तान।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल में विनाशकारी बाढ़ त्रासदी के बाद अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। इनमें त्रिशूली एक परियोजना के 63 कर्मचारी और तमिलनाडु के 21 व्यक्ति शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि 320 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है और वे लापता हैं। मंत्रालय ने बताया कि कल 149 लोग चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच गए हैं। उधर चीन की तरफ लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और भारतीय दूतावास उनके संपर्क में है और उन्हें वहां से निकालने के लिए काम कर रहा है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग लापता हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के कल 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्य बल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर द्वारा भेजे जा सकते हैं। इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट 2026 की 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी द्वारा मापी गई औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर वार्षिक आधार पर 6.7% रही। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इस दौरान औद्योगिक गतिविधि में अच्छी गति से वृद्धि जारी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। 10वां महिला एशिया कप कल संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आरंभ हो गया है। एशिया कप के 2026 के इस संस्करण में कुल 8 टीमें भाग ले रही हैं, जिन्हें 4-4 के 2 समूहों में बांटा गया है। ग्रुप ए में भारत और पाकिस्तान के साथ हांगकांग

स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आकाशवाणी गोल्ड 100.1 और 2:11 हुए हैं। ये वक्त रहता है रात सुरमई का, रात भर का है मेहमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। बस गीतों की कुछ ऐसी ही बयार इस वक्त बहेगी जो सुकून और शीतलता दोनों महसूस कराएगी। गीतों की मिठास, गीतों की खुशबू जब चारों तरफ फैली हो तो क्यों ना मन मदमस्त हो उठे। नदी का किनारा, प्रकृति का सहारा, चांद तारों की छांव, सभी कुछ महसूस कर पाएंगे। यहां तन स्वस्थ हो, मन खुश हो तो चारों तरफ खुशनुमा माहौल नजर आता है। और ऐसे ही नजारों के बीच मधुर मीठा दिल में उतरता संगीत खामोशियों में खामोशियों से कुछ कहता, यही कहना सुनना मीठी और प्यारी यादें हमारे जहन में बसा देता है। तो चलिए बहुत सारी न्यारी प्यारी अजीज यादों को यहां बटोरते हैं, इकट्ठा करते हैं, ताकि रात की तन्हाइयों में इनका साथ भी साथ दे। आकाशवाणी गोल्ड 100.1 रात सुरमई, अंजलि है आपके साथ।

अपनी सांसों में महकता पाया है तुझे, अपनी सांसों में महकता पाया है तुझे, हर ख्वाब में बुलाया है तुझे। क्यों ना करें याद तुझको, क्यों ना करें याद तुझको, जब खुदा ने हमारे लिए बनाया है तुझे।

दिल की किताब में गुलाब उनका था, दिल की किताब में गुलाब उनका था, रात की नींद में ख्वाब उनका था। कितना प्यार करते हो जब हमने पूछा, मर जाएंगे तुम्हारे बिना, ये जवाब उनका था।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, और इस वक्त रात सुरमई का ये सफर मैं और आप तय कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि गाने आपके दिल को छू रहे होंगे, बातें भी कहीं ना कहीं दिल में पहुंच रही होंगी। शान से हम तेरे दिल में रहेंगे, शान से हम तेरे दिल में रहेंगे, तेरी मोहब्बत पे जान इसार करेंगे, देख के जलेगी हमें दुनिया सारी, इस कदर बेपनाह तुझे प्यार करेंगे।

जब से देखा है तेरी आंखों में झांक कर, जब से देखा है तेरी आंखों में झांक कर, कोई आईना अच्छा नहीं लगता। तेरी मोहब्बत में ऐसे हुए दीवाने, तुम्हें कोई और देखे तो अच्छा नहीं लगता।

इसी के साथ अंजलि आपसे ले रही है इजाजत, लेकिन आप सुनते रहें आकाशवाणी गोल्ड 100.1। आगे का सफर भी जारी रहेगा और आपके साथ रहेंगी माधुरी। कुछ ही देर में सुनिएगा समाचार।

0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम, लक्षद्वीप की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति शिक्षा, जनसेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग जगत और शैक्षिक जगत के बीच सहयोग, मत्स्य पालन से जुड़े कार्यक्रमों तथा प्रमुख सार्वजनिक समारोहों में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के इरोड में कोंगु वेल्लालोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रस्ट के स्थापना दिवस में समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति बेंगलुरु जाएंगे, जहां वे विधानसौधा में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के जन्मशती समारोह में शामिल होंगे। रविवार को उपराष्ट्रपति केरलम के अलापुझा जाएंगे, वे केरल कौमुदी की 115वीं वर्षगांठ के समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद वे पतनम मतिट्टा जाएंगे और वहां अरनमुला जल महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। श्री राधाकृष्णन तिरुवनंतपुरम में केरलम के प्रमुख सांस्कृतिक त्योहार ओणम पेजेंट्री का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत करेंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं।
1: भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच करीबी, बहुआयामी और बढ़ते राजनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देगी। चर्चा के दौरान आपसी सहयोग के कई इलाकों को शामिल किए जाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल में विनाशकारी बाढ़ त्रासदी के बाद अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। इनमें त्रिशूली एक परियोजना के 63 कर्मचारी और तमिलनाडु के 21 व्यक्ति शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि 320 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है और वे लापता हैं। मंत्रालय ने बताया कि कल 149 लोग चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच गए हैं। उधर चीन की तरफ लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और भारतीय दूतावास उनके संपर्क में है और उन्हें वहां से निकालने के लिए काम कर रहा है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग लापता हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर द्वारा भेजे जा सकते हैं। इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट 2026 की 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। अमेरिका ने ईरान की सरकार को और वहां की सेना के वित्तीय स्रोत काटने की कोशिश के अंतर्गत ईरान के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक मेल्ली के एक वरिष्ठ अधिकारी और हांगकांग की एक कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिकी वित्त विभाग ने बैंक मेल्ली की दुबई शाखा के प्रबंधक रजा मोहम्मद तईदी को निशाना बनाया। उसने कहा कि यह बैंक ईरान की सेना, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर की कुद्स फोर्स और रक्षा मंत्रालय को मदद मुहैया करा रहा है। 10वां महिला एशिया कप कल संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आरंभ हो गया है। एशिया कप के 2026 के इस संस्करण में कुल 8 टीमें भाग ले रही हैं, जिन्हें 4-4 के 2 समूहों में बांटा गया है। ग्रुप ए में भारत और पाकिस्तान के साथ हांगकांग और थाईलैंड हैं, जबकि ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया शामिल हैं। आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ग्रुप बी के मैच में श्रीलंका का मुकाबला संयुक्त अरब अमीरात से होगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर सुन रहे हैं और आज की रात हमराही लेकर माधुरी है आप सभी के साथ।

अजनबी फिल्म का ये गीत सुना आप सभी ने किशोर कुमार और लता जी के आवाज में आर डी बर्मन के संगीत से सजा हुआ। और प्यार के जो महक होती है वो ऐसी ही होती है।

जाती है, किसी को भी दीवाना कर देती है। बारिश बारिश नहीं लगती, धूप धूप नहीं लगती और हवा हवा नहीं लगती। लगता है कि ऊपर आसमान में चांद हो और नीचे बस किसी तरह छुप छुपा के हम बैठे हों और बातें कर रहे हों।

देवता फिल्म से ये गीत सुन रहे थे आप लता जी और किशोर कुमार की आवाज में, और ये है खास कार्यक्रम जिसका नाम है हमराही। और खास इसलिए है क्योंकि युगल गीतों की खास प्रस्तुति होती है इस कार्यक्रम में, जिन्हें आप बहुत पसंद करते हैं।

किशोर और लता जी की आवाज में ये खूबसूरत सा गीत सुन रहे थे आप। फिल्म फिर वही रात से आरडी बर्मन का संगीत और मजरू सुल्तानपुरी के लिखे बोल। और सच्ची है कि प्यार में एक अजब सी खुमारी होती है, क्या से क्या हो जाता है। अच्छा भला जो इंसान है वो तबाह तो नहीं करूंगी लेकिन हाँ ये कहूंगी कि उसमें मोहब्बत भर जाती है। हम मोहब्बत सिर्फ उसी से नहीं करते जिसे हम मोहब्बत करना चाहते हैं। मोहब्बत इंसान को सच में बदल देती है, वो सबसे मोहब्बत करना सिखाती है। ऐसा नहीं है कि हम एक से मोहब्बत कर रहे हैं और दूसरे से जो है हम नफरत पाल रहे हैं, बिल्कुल नहीं। मोहब्बत अलग ही लेवल की जो है वो शय है। और देखिए ना, शायर भी क्या कहते हैं कि नींद भी, बेदारी भी, ख्वाब भी।

आंसू भी, क्या क्या है इन आंखों की अलमारी में। एक ही रंग का फूल था लेकिन ले आया एक सतरंगी तितली को फुलवारी में। तुझसे पहले पहुंचूं राह तकूं तेरी, कुछ बुद्धूपन भी है इस होशियारी में। सच में मोहब्बत में थोड़ा बुद्धूपन तो होता ही है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार

0: बार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये सफर है हमराही का, जी हाँ, ड्यूट गीतों की खास पेशकश जिसे लेकर आज की रात माधुरी आप सभी के साथ। तो चलिए सुनते रहते हैं इन गीतों को।

मोहब्बत का कोई सदमा उठाना चाहिए था, भुलाया था जिसे वो याद आना चाहिए था। मेरी अपनी और उसकी आरजू में फर्क ये था, मुझे बस वो उसे सारा जमाना चाहिए था।

रात्रि के 3:48 और हो गए हैं पूरे 20 सेकेंड। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ और कार्यक्रम है हमराही।

फिल्म धर्म करम का ये गीत सुन रहे थे आप, मुकेश साहब, किशोर कुमार और आशा भोसले साथियों की आवाज़ में, आर डी बर्मन का संगीत, मच्छू सुल्तानपुरी के लिखे बोल। और प्यार की बात चले तो ख़त्म कहाँ होती है, कहीं नहीं होती, उसकी मंजिल बदलती जाती है और आगे बढ़ती जाती है, बातें यूं ही चलती रहती हैं। हर गीत में मोहब्बत भरी हुई है और हम यही तो चाहते हैं कि सबके दिल मोहब्बत से भर जाएं। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बहार आ जाए, जैसे सहरे में हौले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को चुपके से दवा मिल जाए। और आराम से ये गीत भी बज जाए। फिल्म दिलजला से गीत है आप सभी के लिए, आशा जी और किशोर कुमार की आवाज़ में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की चार दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई

0: क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं।
1: भारत और उज़्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच करीबी, बहुआयामी और बढ़ते राजनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देगी। चर्चा के दौरान आपसी सहयोग के कई इलाकों को शामिल किए जाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज़्बेकिस्तान।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल में विनाशकारी बाढ़ त्रासदी के बाद अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। इनमें त्रिशूली एक परियोजना के 63 कर्मचारी और तमिलनाडु के 21 व्यक्ति शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि 320 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है और वे लापता हैं। मंत्रालय ने बताया कि कल 149 लोग चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच गए हैं। उधर चीन की तरफ लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और भारतीय दूतावास उनके संपर्क में है और उन्हें वहां से निकालने के लिए काम कर रहा है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग लापता हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्य बल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर द्वारा भेजे जा सकते हैं। इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट 2026 के 84 विषयों के परिणाम घोषित कर दिए हैं। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी द्वारा मापी गई औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर वार्षिक आधार पर 6.7% रही। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इस दौरान औद्योगिक गतिविधि में अच्छी गति से वृद्धि जारी रही। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम और लक्षद्वीप की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति शिक्षा, जनसेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग जगत और शैक्षिक जगत के बीच सहयोग, मत्स्य पालन से जुड़े कार्यक्रमों तथा प्रमुख सार्वजनिक समारोहों में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने ओडिशा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, मैदानी पश्चिमी बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन 2026 का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में उन्होंने स्थानीय खिलाड़ी हंगरी के बालास फारकस को सीधे गेम में 3-0 से हराकर यह ऐतिहासिक जीत दर्ज की। विश्व में 54वीं वरीयता के खिलाड़ी वेलवन सेंथिल कुमार ने बालास फारकस को 11-4, 11-2, 11-3 से सीधे गेमों में हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। 10वां महिला एशिया कप कल संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आरंभ हो गया है। एशिया कप के 2026 के इस संस्करण में कुल 8 टीमें भाग ले रही हैं, जिन्हें 4-4 के 2 समूहों में बांटा गया है। ग्रुप ए में भारत और पाकिस्तान के साथ हांगकांग और थाईलैंड है, जबकि ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया शामिल है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ग्रुप बी के मैच में आज श्रीलंका का मुकाबला संयुक्त अरब अमीरात से होगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। India has stepped up humanitarian assistance to Nepal affected by flash floods as a third flight carrying 10 tons of humanitarian assistance has departed for Kathmandu. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar informed this in a social media post. The minister said that the assistance includes portable generator sets, dignity kits, food packets and water purification tablets. Dr. Jayashankar said that an 11-member team of doctors, paramedics and recce team for tunnel rescue operations is also on board. He also reiterated India's support to Nepal's ongoing relief

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं आप, और ये सफर है अरुणिमा का, जिसे लेकर आज की रात माधुरी है आप सभी के साथ। स्वागत है अरुणिमा के इस सफर में आप सभी सुनने वालों का। यूं ही हमें सुनते रहिए, यूं ही जुड़े रहिए आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल के साथ।

फिल्म रेशमा और शेरा से ये गीत आप सभी के लिए था लता जी के आवाज में। और कुछ गीत लंबे जरूर होते हैं लेकिन इतने मधुर होते हैं कि धीरे धीरे हमारे दिल को छूते जाते हैं, भिगोते चले जाते हैं। उन्हीं गीतों में से एक गीत ये था जो अभी आपने सुना। दरवाजा बंद रखने से भी क्या मिला मुझे, आवाज दे रहा था तेरा रास्ता मुझे।

फिल्म द ग्रेट गैम्बलर से ये गीत सुना आप सभी ने लता जी की आवाज में, और साथ ही साथ कहीं कहीं और आवाजें भी थी, शायद आपने पहचाना हो। चलिए बताइएगा कि आपने पहचाना उन आवाजों को। और रात के इस पहर में अब क्या कहूं कि हम मुसाफिर हैं एक कश्ती के, दोस्त बन जाएं तो बुरा क्या है, अब ये सोचा है खुश रहें, देखें तकदीर में लिखा क्या है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अरुणिमा का ये सफर है और समय हो गया है सुबह के 4:34:10। माधुरी है आप सभी के साथ और हम इस सफर में सुन रहे हैं बेहद खूबसूरत गीत। गम तो खैर सबके पास होता है और सबके दिल में रहता है, पर अपना गम सभी को ज़्यादा लगता है। मुझे अपना लगता है, आपको अपना लगता होगा, लेकिन इस सबसे अगर परे होके देखें तो जिंदगी की खूबसूरती इन्हीं गम और खुशी के उतार चढ़ाव में छिपी हुई है। अब इस पर एक शेर भी आपके पेशे नजर कर देती हूँ कि तुझे इस गम का अंदाजा नहीं है, तुझे इस गम का अंदाजा नहीं है, ये दिल का गम है, दुनिया का नहीं है।
2: अब

जी आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। न कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, खुदा करे कि ये जो हर पल है सबको रास आए। और बहुत सारी बातें हम और आप मिलकर करते हैं और इस सफर को आगे बढ़ाते जाते हैं। अभी बहुत ही खूबसूरत गीत सुना आपने फिल्म लैला मजनू से, और अब अगला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म प्रेम रोग से।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: अरुणिमा का ये सफर है आकाशवाणी के FM गोल्ड दिल्ली पर और 100 बज अरुणिमा में आगे बढ़ते हुए और कुछ बातें हम और आप कर लेते हैं। बहुत खुश है कि वो तन्हा नहीं।

वे मुझसे कोई जीता नहीं है और न जाने कहाँ रूपोश है, कई दिन से उसे देखा नहीं है। हम चलते चलते खुद में खुद को ढूंढते हुए कितनी आगे निकल जाते हैं और फिर पाते हैं कि क्या हम में हम हैं।

देखिए ना, रात का ये पहर भी बीतते बीतते बस बीतने को है, और अरुणिमा का ये सफर अब हम यहीं समाप्त करते हैं। फिलहाल चलते हैं समाचार कक्ष की ओर, लेते हैं देश दुनिया का हाल, यानी सुनते हैं समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद जा रहे हैं। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने वर्ष 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया था। इस दौरान द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं।
1: भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच करीबी, बहुआयामी और बढ़ते राजनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देगी। चर्चा के दौरान आपसी सहयोग के कई इलाकों को शामिल किए जाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशने की

0: उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अभी लापता हैं। दक्षिणी पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। इनमें त्रिशूली वन परियोजना के 63 कर्मचारी और तमिलनाडु के 21 व्यक्ति शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा है कि 320 भारतीयों से संपर्क नहीं हो सका। मंत्रालय ने बताया कि कल 149 लोग चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंचे हैं। उधर चीन की तरफ लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। भारतीय दूतावास उनके संपर्क में है और उन्हें निकालने का काम जारी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम और लक्षद्वीप की 3 दिन की यात्रा पर आज जा रहे हैं। इस दौरान उपराष्ट्रपति शिक्षा, लोक सेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग जगत और शिक्षा जगत के बीच सहयोग, मत्स्य पालन से जुड़े कार्यक्रमों तथा प्रमुख सार्वजनिक समारोहों में शामिल होंगे। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी के मूल्यों में लगभग 20% की गिरावट आई है और खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितम्बर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट 2026 के 84 विषयों के परिणाम घोषित कर दिए हैं। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन की दर 6.7% रही। इस दौरान औद्योगिक गतिविधि में अच्छी गति से वृद्धि जारी रही, हालांकि इस अवधि में विकास की गति जून से कम रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम का ये 137वां संस्करण होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। मौसम विभाग ने ओडिशा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों, झारखंड, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजधानी में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल सेंथिल ने हंगरी के बालास फरकाश को लगातार गेम में 3-0 से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi will embark on a four-day visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan today. In the first leg of the trip, Mr. Modi will reach Uzbekistan's capital, Tashkent, today. During the visit, Prime Minister Modi and President of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, will review cooperation in different sectors. This will be Prime Minister's fourth visit to Uzbekistan. Prime Minister's office in a statement said that during his two-day visit, Mr. Modi will hold delegation-level talks with President Mirziyoyev to further strengthen the strategic partnership between India and Uzbekistan. The two leaders would review cooperation in trade and investment, defense, digital connectivity, energy, education and people-to-people domains and set the agenda for the road ahead. On the second leg of his visit, the Prime Minister will travel to Bishkek on a two-day visit to participate in the 26th Shanghai Cooperation Organization SCO Summit at the invitation of the President of Kyrgyz Republic, Sadir Japarov. India has stepped up humanitarian assistance to Nepal affected by flash floods as the third flight carrying

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं आप। और अब शुरू हो रहा है भोर सुहानी का ये सफर। हमारे बहुत सारे रात के जो श्रोता हैं वो तो हमें सुन ही रहे हैं, लेकिन सुबह जल्दी उठने वाले हमारे श्रोता भी अब उठकर हमसे जुड़ रहे होंगे। तो सभी को सुप्रभात। सुबह के 5:11 और हो गए हैं पूरे 18 सेकेंड।

दो कलियां फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे लता और मोहम्मद रफी की आवाजों में, संगीत रवि का और बोल साहिर लुधियानवी के। और जब वक्त बदलता है ना तो हालात भी बदलते हैं और इंसान अच्छे बुरे हालात से गुजरता है, धीरे धीरे परिपक्व होता जाता है। और सच्ची कहा है कि वक्त बहुत कुछ सिखा देता है। वक्त के साथ हम सीखते चले जाते हैं और फिर समझते हैं कि जो ज़िंदगी गुजरी है उसमें बहुत कुछ अच्छा बुरा जो हुआ उसमें हमारा जो करदार है वो कुछ और भी हो सकता था। और इसी पे दो लाइनें और नज़र करती हूँ मैं आपके, गौर फरमाइएगा कि परेशानी अगर है तो परेशानी का हल भी है, परेशानी अगर है तो परेशानी का हल भी है, परेशान हाल रहने से परेशानी नहीं जाती।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: सुबह के 5:29 और हो चुके हैं पूरे 25 सेकेंड। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ 100.1 MHz पर। ये सफर है अरुणिमा का और माधुरी एक बार फिर आप सभी सुनने वालों को कहती है सुप्रभात।